0: শ্ৰোতাসকল, খন্তেক পাছতে অৰ্থাৎ 6 বজাত হিন্দীত আৰু 6:05 ইংৰাজীত বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই ফৰহত নাজ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लोगों से ईंधन का संयमित उपयोग करने की अपील की।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। श्री मोदी सोमनाथ महादेव की पूजा करेंगे और कुंभाभिषेक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे और रोड शो में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हेमंत बिस्व सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के विधायक दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री सरमा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री सरमा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के पास जहाज पर घातक हंता वायरस प्रकोप के बाद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को उतारकर उनके देशों में भेजा जा रहा है। बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सभी यात्रियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अंतर्गत रखा गया है। स्पेन और फ्रांस के नागरिकों को लेकर सरकारी विमान स्थानीय समय अनुसार कल दोपहर मैड्रिड और पेरिस पहुंचे। यात्रियों को परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया। कनाडा, तुर्की, ब्रिटेन, आयरलैंड और अमेरिका के नागरिकों के आज पहुंचने की संभावना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जहाज के सभी यात्रियों के लिए 42 दिन के क्वारंटाइन की सिफारिश की है। स्पेन में भारतीय दूतावास ने कहा है कि हंता वायरस से प्रभावित जहाज से उतारे गए दोनों भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं है। इस जहाज पर 2 भारतीय सहित लगभग 150 लोग सवार थे। रूस ने कहा है कि वह नाटो या जर्मनी के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यूरोप में संयुक्त परमाणु सुरक्षा कवच पर चर्चाओं से महाद्वीप का रणनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। जर्मनी में रूस के राजदूत सर्गेई नेचेयोव ने बर्लिन में कहा कि यूरोप में परमाणु खतरे के किसी भी विस्तार से रूस को अपने परमाणु सिद्धांत पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मॉस्को को सैन्य खतरों का सामना करना पड़ा तो वो संयम की गारंटी नहीं दे पाएगा। भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। सेमीफाइनल में कल यश कुमार ने 33 किलो वर्ग संयुक्त अरब अमीरात के कियान इकबाल को 5-0 से हराया। 37 किलो वर्ग में वसंत अशोक कुमार ने किर्गिस्तान के अजतरेताली संझार बेकोफ को हराया। वहीं 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने उज्बेकिस्तान के अदिजबेक इकलोमेव को 4-1 से जीत दर्ज की, जबकि सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में ईरान के अमीर मेहदी शाद को पराजित किया। 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासिर ने ईरान के सैयद दरिया मोहम्मद मूसा को, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने किर्गिस्तान के मुखमदाली बेर्दिकोव को हराया। रोहित पोथियाना, नितिन नोपोंगनबा, मेतई ओइना, प्रशांत हर्षवर्धन जीना, देव और सुशांत जयानी सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया है। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra.

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया और एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सुजो में आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन

0: कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक जनसभा में नागरिकों से एक वर्ष के लिए पेट्रोल और डीजल के संयमित उपयोग, अनावश्यक विदेशी यात्रा से बचने, सोने की खरीदारी नहीं करने और स्थानीय वस्तुओं को प्राथमिकता देने जैसे उपाय अपनाने की अपील की।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई मार्ग से जामनगर से सोमनाथ पहुंचेंगे। हेलीपैड पर उतरने के बाद वे वीर हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो के दौरान जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सपना देखा था। श्री मोदी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे तथा मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण भी करेंगे। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम सोमनाथ के आकाश में रोमांचक एयर शो प्रस्तुत करेंगी। पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वे एक विशेष स्मारक डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। मयूर सोलंगी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: बाद में प्रधानमंत्री वडोदरा जाएंगे। वे शाम लगभग 6 बजे सरदार धाम हॉस्टल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना में 1000 लड़कों और 1000 लड़कियों के लिए हॉस्टल की सुविधाएं शामिल हैं। इसमें सेंट्रल डाइनिंग हॉल, पुस्तकालय और ऑडिटोरियम जैसी सुविधाएं भी हैं। श्री मोदी सरदार धाम परिसर में विभिन्न सुविधाओं का भी दौरा करेंगे, जिनमें रिसेप्शन एरिया, नागरिक सुविधाएं, डाइनिंग एरिया और ई लाइब्रेरी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हिमंत बिस्वा सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है।
3: सर्वसम्मति से भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री सरमा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री सरमा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह खानपाड़ा के वेटरनरी कॉलेज मैदान में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई गणमान्य लोगों के समारोह में शामिल होने की संभावना है। एनडीए में भाजपा, असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट शामिल हैं। गठबंधन ने विधानसभा चुनावों में 126 में से 102 सीटें जीती। भाजपा ने 82 सीटें हासिल की। श्री शर्मा पहली बार 2021 में मुख्यमंत्री बने थे। वह असम में पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता बनने जा रहे हैं जो लगातार दो बार मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंद्र अधिकारी आज राज्य सचिवालय नवन्ना में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: पश्चिम बंगाल की नई सरकार अपनी प्रशासनिक यात्रा शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नवन्ना में पहली कैबिनेट बैठक करेंगे। उस बैठक में 5 नए शपथ ग्रहण किए गए मंत्रियों का विभागों का अन्य विभागों पर भी निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा के चुनावी वादे एजेंडा में सबसे ऊपर रहेंगे, जिनमें आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का क्रियान्वयन, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य कर्मचारियों के 7वें वेतन आयोग का लागू होना शामिल है। आज मुख्यमंत्री सचिवों, जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी मिलेंगे, ताकि प्रशासनिक कार्यों का गति और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की जा सके। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वामपंथी दलों ने भाजपा के खिलाफ संयुक्त विपक्षी मोर्चा बनाने के ममता बनर्जी का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कट्टर वाम दलों सहित सभी विपक्षी दलों से भाजपा के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया था। कांग्रेस प्रवक्ता सौम्या एच रॉय ने ममता बनर्जी की अपील खारिज करते हुए पूछा कि वो कट्टर वामपंथी समूह की बात क्यों कर रही हैं। उन्होंने 2013 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ माओवादी हिंसा का भी जिक्र किया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर पिछले चुनावों में कांग्रेस को बदनाम करने और भाजपा के उदय को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि ममता बनर्जी ने ही भाजपा को बंगाल में पैर जमाने का मौका दिया। माकपा के प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम ने भी इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए ममता बनर्जी को भ्रष्ट और सांप्रदायिक बताया। सीपीआई के प्रदेश सचिव

0: अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं और पर्यटकों से राज्य में खराब मौसम की स्थिति के बीच सतर्क रहने तथा सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है।
3: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न भागों विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में कल और बुधवार को खराब मौसम और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से यात्रा के दौरान मौसम के बारे में ताजा जानकारी रखने और सावधानी के साथ यात्रा कार्यक्रम तैयार करने का आग्रह किया है। यात्रियों से राज्य में खराब मौसम को देखते हुए 12 और 13 मई को यात्रा कार्यक्रम तैयार करते समय अधिक सजग रहने की अपील की गई है। सभी संबंधित सरकारी विभागों को यात्रियों के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं एसबी त्रिपाठी।
2: पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान का प्रस्ताव खारिज कर दिया है।
4: इससे पहले कल ईरान ने कहा था कि उसने पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के प्रस्ताव पर जवाब भेजा है। यह जवाब पाकिस्तान के माध्यम से भेजा गया, जो ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने कहा कि पश्चिमी देशों के साथ बातचीत को आत्मसमर्पण या पीछे हटने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कल रात राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के उच्च संवर्धनित यूरेनियम को हटाने की आवश्यकता पर सहमत हुए, जो वार्ता का प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। ईरान ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य में अमरीकी समुद्री अभियानों के साथ फ्रांसीसी या ब्रिटिश युद्धपोतों की किसी भी तैनाती का निर्णायक और तत्काल जवाब दिया जाएगा। फ्रांस के अधिकारियों ने कहा कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गॉल, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के नेतृत्व में रणनीतिक जलमार्ग में नौवहन की स्वतंत्रता बहाल करने के प्रयासों के तहत इस क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। समाचार कक्ष कृष्णकांत।
2: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
5: सुजो में AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज मेजबान चीन और भारत आमने सामने होंगे। ये मैच जीतते ही भारत फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में जगह पक्की कर लेगा। भारत इससे पहले 2017 और 2022 में मेजबान के तौर पर इस विश्व कप में हिस्सा ले चुका है, लेकिन उसने प्रतियोगिता के जरिए क्वालिफाई नहीं किया था। भारत ने ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। इस बीच भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। फाइनल में कल यश कुमार ने 33 किलो वर्ग में, 37 किलो वर्ग में वसंत कुमार ने, 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने, सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में, 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासर ने, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने जीत दर्ज की। रोहित पोथीना, नितिन नोंग पोकांगवा, मेईतेई ओइना, प्रशांत हर्षवर्धन जीना देव और सुशांत जयानी को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। इधर IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा।
2: पश्चिम बंगाल में विशेष जांच दल ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के सिलसिले में 3 लोगों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 3 कुख्यात शूटर हैं। हत्या की साजिश में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0112317171 और 0112317106। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
6: धन्यवाद विशाल। पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न चुनौतियों पर

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देशवासियों से आह्वान, दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। पेट्रोल डीजल और गैस का संयम से करें इस्तेमाल। राजस्थान पत्रिका ने पीएम के हवाले से लिखा है, एक साल सोना नहीं खरीदें, वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन मीटिंग करें। हिंदुस्तान ने आर्थिक विशेषज्ञों के हवाले से लिखा है, प्रधानमंत्री की अपील का सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद, आयात बिल घटने से अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। तमिलनाडु में नई सरकार का गठन भी अखबारों की सुर्खी बनी है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय राज, 6 दशक बाद गैर द्रविड़ सरकार। टीवीके प्रमुख विजय ने ली सीएम की शपथ। वहीं देशबंधु की सुर्खी है, केरलम में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर संशय बरकरार। बदलाव का चेहरा शीर्षक से अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति का चक्र तोड़ते हुए थालापति विजय का मुख्यमंत्री बनना इस बात का प्रतीक है कि राज्य नई ऊर्जा, नई सोच और नए राजनीतिक प्रयोग की ओर बढ़ रहा है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि मुख्यमंत्री विजय केंद्र राज्य संबंधों में संतुलन बनाने में कैसी परिपक्वता दिखाते हैं और सुशासन की मिसाल कायम करते हैं। भारत की सभ्यता का प्रतिबिंब सोमनाथ शीर्षक से केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री का लेख नवभारत टाइम्स में है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने लिखा है, कोई सभ्यता तब तक मजबूत रहती है जब तक वो अपनी जड़ों से जुड़ी रहे। लोकतंत्र की ताकत संघर्ष में नहीं बल्कि संतुलन और सम्मान में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान पंजाब केसरी में है। एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा कि 1947 से संसद और विधानसभाओं द्वारा लाए गए बदलाव देश में लोकतंत्र की मजबूती को बताते हैं। झूठ को तोड़ता और सच को जोड़ता चीन सीमा पर सेना का रेडियो। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार भारत चीन सीमा से लगे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सेना के ये रेडियो स्थानीय बोलियों में मौसम के अलर्ट के साथ साथ संवेदनशील सीमा पर गलत जानकारी से निपटने में मददगार साबित हो रहे हैं।
1: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्वा सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच चार धाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। और AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजो में आमने सामने होंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: আকাশবাণীত বিজ্ঞাপন দিয়ক অগণিত শ্রোতার কাষ চাপক।
1: Our voice gets you heard everywhere.
0: বিজ্ঞাপন জনসাধারণক সজাগ কৰিবলৈ আৰু চৰকাৰী আঁচনিৰ বিষয়ে অৱগত কৰাবলৈ আমাৰ ফোন নম্বৰটি হৈছে
1: 6900453528।
0: আকাশবাণী গুৱাহাটী, সর্বক্ষণ সর্বত্র আপোনাৰ সৈতে।
2: অগ্নিযুগৰ গান,
3: অগ্নিযুগৰ ফিৰিঙতি মই নতুন অসম গঢ়িম।
4: ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবৰ্ষ উপলক্ষে আমাৰ দৈনিক আয়োজন অগ্নিযুগৰ গান।
3: ও মোৰ প্ৰিয় জনগণ, মই গাওঁ তোমাৰ গান।
2: প্ৰতি পুৱা 8:15 পৰা 8:25
5: শ্ৰোতাসকল, ক্ষণেক পাছতে 12:00 হিন্দীত আৰু 12:05 ইংৰাজীত বাতৰি শুনিবলৈ পাব আৰু 12:10 পৰা সৈন্য বাহিনীৰ উদ্দেশ্যে প্ৰচাৰিত অনুষ্ঠান শুনিবলৈ পাব।
6: আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই কনকলতা। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ अमृत पर्व समारोह में शामिल होने के लिए आज गुजरात के प्रभास पाटन पहुंचे। हेलीपैड पर उतरने के बाद प्रधानमंत्री ने हमीरजी गोहिल सर्कल तक 1 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत पर्व के तहत धार्मिक अनुष्ठानों में भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। श्री मोदी बाद में वडोदरा भी जाएंगे, जहां वे शाम सरदार धाम छात्रावास का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान उत्सव के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि यह उत्सव भारत की शाश्वत ऊर्जा का उत्सव है और सोमनाथ मंदिर भारत की आध्यात्मिक चेतना और आस्था का सशक्त प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच राष्ट्र को सशक्त बनाने में देशवासियों को साझेदार बनने का आह्वान किया है। हैदराबाद में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से 7 अपील की। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पोलिंग के जरिए आयातित ईंधन के उपभोग को कम करके विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री की अपील ऐसे समय में आई है जब पश्चिम एशिया संकट और होर्मुज जलडमरू मध्य में गतिरोध जारी रहने के कारण प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत में $100 से अधिक बनी हुई है।
7: आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, हमें वो मुद्रा भी बचानी है। वैश्विक संकटों से जो चुनौतियां आई है, हमें उन चुनौतियों को परास्त करना होगा।
6: प्रधानमंत्री ने एक वर्ष के लिए विदेशों में शादी कार्यक्रम आयोजित करने या अत्यधिक सोने की खरीदारी को सीमित करने पर दोबारा विचार करने जैसे विदेशी खर्च में कटौती के उपाय तलाशने का आग्रह भी नागरिकों से किया। श्री मोदी ने वर्क फ्रॉम होम अभ्यास को फिर से लागू करने का भी आह्वान किया। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने भारतीय जनता पार्टी के हिमंता बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार का गठन करने के लिए आमंत्रित किया है। असम में एनडीए की पहली के लगातार तीसरी सरकार होगी। एनडीए विधानमंडल दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री हिमंता ने गठबंधन के अन्य नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की थी और सरकार बनाने का दावा पेश किया था। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और मंत्रिपरिषद के नए सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पर्यावरण

0: और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया के जलवायु और ऊर्जा मंत्री क्रिस बोवेन के साथ वर्चुअल बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने बताया कि उन्होंने सम्मेलन समिति COP 31 की प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भटियात उपमंडल में काकरा लाहरू सड़क पर एक कार दुर्घटना में 6 पर्यटकों की मौत हो गई, 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मृतकों में से 5 गुजरात के निवासी थे जबकि चालक मंडी जिले का रहने वाला था। उत्तराखंड सरकार ने चार धाम यात्रा के श्रद्धालुओं और पर्यटकों से राज्य में खराब मौसम की स्थिति में सतर्क रहने और सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न भागों विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में कल और बुधवार को खराब मौसम और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यात्रियों से राज्य में खराब मौसम को देखते हुए 12 और 13 मई को यात्रा कार्यक्रम तैयार करते समय अधिक सजग रहने की अपील की गई है। वैश्विक उथल पुथल के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आज जारी रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में अर्थव्यवस्था में 6.6% की वृद्धि होने का अनुमान है। फुटबॉल में FC बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 2-0 से हराकर वर्ष 2025-26 का ला लीगा खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi offered prayers and performed puja at Somnath Temple in Gujarat during the Somnath Amrit Parv celebrations. It marks 75 years since the inauguration of the restored temple. The Mahapuja was followed by the Kumbhabhishek and flag hoisting ceremony. Earlier this morning, Prime Minister Modi arrived at Prabhaspatan and held a 1-kilometer road show up to Hamirji Gohil Circle. Mr. Modi greeted the huge crowd gathered during the show. Chief Minister Bhupendra Patel and Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi also accompanied him during the road show. While proceeding to the Somnath Temple, the Prime Minister was led by rhythmic beats of the Damru and greeted by devotees. The Prime Minister paid floral tribute to Sardar Vallabhbhai Patel at his statue. Later in the day, the Prime Minister will travel to Vadodara, where he will inaugurate the Sardar Dham Hostel. Prime Minister Narendra Modi has called upon countrymen to become a partner in strengthening the nation amid the West Asia crisis. Addressing a function in Hyderabad yesterday, the Prime Minister made 7 appeals to the nation. He urged citizens to help conserve foreign exchange reserves by reducing the consumption of imported fuel through the use of public transport and carpooling. The Prime Minister's appeal comes at a time when crude oil prices are trading above $100 per barrel due to the West Asia crisis, and the deadlock in the Strait of Hormuz still persists. Crude oil prices had touched a 52-week high of $126 per barrel at the end of last month.
2: आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, हमें वो मुद्रा भी बचानी है। वैश्विक संकटों से जो चुनौतियां आई है, हमें उन चुनौतियों को परास्त करना होगा।
1: In Himachal Pradesh, 6 tourists lost their lives after their vehicle plunged into a gorge near Kakira in the Bhatiyat area of Chamba district amid heavy rain and strong winds. 4 others were seriously injured. After receiving primary treatment, the injured were referred to Dr. Rajendra Prasad Government Medical College. Among the deceased, 5 were residents of Gujarat, while the driver was a resident of Mandi district. National Technology Day is being celebrated today. The day is marked to commemorate the historic Pokhran 2 nuclear tests of 1998. It aims to pay tribute to the scientists, innovators and visionaries driving the dream of an Atmanirbhar Bharat through technology, research and innovation. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have extended greetings to scientists, engineers, innovators and researchers of the country on the occasion. In a social media post, the Vice President wished that the nation continue to make significant strides in science, innovation and technology

0: host China in the crucial quarterfinal match at the AFC Under-17 Women's Asian Cup in Suzhou today. Benchmark domestic equity indices were trading around 1% lower in forenoon trade today amid weak global cues. The Sensex dropped 864 points to 76,464, while the Nifty dipped 240 points to 23,936 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राचीन दस पर है मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और सैनिक भाइयों के लिए प्रस्तुत है आज का प्रसारण।

आज के इस प्रसारण में मैं निमिषा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सैनिक भाइयों, कुछ ही पलों में हम शुरुआत करेंगे आज के सुरीले गीतों का सुहाना सफर, लेकिन उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर।

अब से कुछ ही पलों में हम लेकर आएंगे पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत। 12:30 पर दैनिक कार्यक्रम आज का गीत, 12:38 पर कार्यक्रम तराना, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार, समाचार के बाद 1:10 पर कार्यक्रम गीत माला।

1:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वतन के तराने। 2 बजे से बारी बारी से आप सुनेंगे अंग्रेजी और हिंदी में समाचार। दिन के 2:30 बजे का समय है कार्यक्रम चयनिका का और इसी के साथ हमारे आज के प्रसारण का समापन होगा दिन के 3 बजे। तो ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

फौजी भाइयों, अब प्रस्तुत है आज के प्रसारण का पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है तुम मिले फिल्म से, केके की आवाज में।

0: अब सुनिए उदित नारायण की आवाज में हमराज फिल्म का ये गीत।
1: तुमसा कोई दूसरा इस समीपे हुआ तो रब से शिकायत होगी, तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो कयामत से पहले कयामत।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर।

अब प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम आज का गीत। कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनाएंगे संघर्ष फिल्म का एक गीत सोनू निगम की आवाज में। बोल है समीर के।

पर। कल मंगलवार है और रोजाना की तरह कल के प्रसारण का आगाज होगा 12:10 पर। 12:12 पर आप सुनेंगे हमारा पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत। 12:30 पर हमारा दैनिक कार्यक्रम आज का गीत।

12:38 पर कार्यक्रम गीत अपना धुन पर आई। 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार। समाचार के बाद 1:10 पर कार्यक्रम एक ही फिल्म के गीत और 1:40 पर कार्यक्रम पनघट।

दो बजे से बारी बारी से आप सुनेंगे अंग्रेजी और हिंदी में समाचार। दिन के 2:30 बजे का समय है कार्यक्रम गुंजन का और इसी के साथ हमारे कल के प्रसारण का समापन होगा दिन के 3 बजे। फौजी भाइयों, ये थी कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराना। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है तुम तो ठहरे परदेसी एल्बम से, अल्ताफ राजा की आवाज में।

अपना दिल अपनी तबाही का सबब होता है, अपना दिल अपनी तबाही का सबब होता है, ये जवानी का जमाना भी अजब होता है। कौन सी बात ने किस शख्स का दिल तोड़ दिया, बोलने वाले को एहसास ही कब होता है।

कि मैं दुश्मनी से बच जाता। अगर गुनाह का मौका गंवा दिया होता, अगर गुनाह का मौका गंवा दिया होता तो मैं जमीर की शर्मिंदगी से बच जाता।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराना। अब आइए सुनते हैं लकी अली की आवाज में कभी ऐसा लगता है एल्बम से ये गीत।

0: सैनिक भाइयों, इसी के साथ अंत होता है कार्यक्रम तराना। अभी दिन के 1:05 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार।
1: आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has said the Somnath temple stands as a beacon of unwavering faith, divinity and a sacred symbol of the country's eternal soul. He was speaking at the Somnath Amrit Mahotsav in Gujarat.
2: Kartarpur corridor, Bauddha circuit ka vikas, inke jariye desh mein tirth kshetron mein aarthik gatividhiyan badi hain. सोमनाथ परिसर भी इसका एक सशक्त उदाहरण है। आज सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट से सैकड़ों परिवार जुड़े हैं, हजारों लोगों का जीवन इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। देश दुनिया के कोने कोने से जो लोग यहां आते हैं वो गुजरात के बाकी हिस्सों में भी जाते हैं।
1: Prime Minister Narendra Modi offered prayers and performed puja at the Somnath Temple in Gujarat during the Somnath Amrit Parv celebrations. It marks 75 years since the inauguration of the restored temple. The Mahapuja was followed by the Kumbhabhishek and flag hoisting ceremony. Prime Minister Narendra Modi has called upon countrymen to become a partner in strengthening the nation amid the West Asia crisis. Addressing a function

अब से आप हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी के डिब्रूगढ़ केंद्र से भी सुन सकते हैं, मीडियम वेव 529.1 मीटर से। और अब प्रस्तुत है सदाबहार गीतों का कार्यक्रम गीतमाला। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है अभिमान फिल्म से, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में।

अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, अनाड़ी फिल्म से मुकेश की आवाज में।

सनी भाइयों, आप सुन रहे हैं सदाबहार गीतों का कार्यक्रम गीतमाला। अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गाना लता मंगेशकर की आवाज में, दो रास्ते फिल्म से।

गीतमाला कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी गुवाहाटी के प्राग ज्योतिषपुर और साथ ही आकाशवाणी के डिब्रूगढ़ केंद्र से भी। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, लव इन टोक्यो फिल्म से।

सैनिक भाइयों, गीतमाला कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी गुवाहाटी के प्रागज्योतिषपुर और साथ ही आकाशवाणी के डिब्रूगढ़ केंद्र से भी। अब आइए सुनते हैं गीतमाला कार्यक्रम का अंतिम गीत लता मंगेशकर की आवाज में, दो बदन फिल्म से।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्रागज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है देशभक्ति मूलक गीतों का कार्यक्रम वतन के तराने। कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम है जिगरी दोस्त।

फूल है खिलते, हर मजहब के लोग हैं मिलते, इस बगिया में इस महफिल में हो हे, हम सारे हैं भारतवासी सब है।

0: अब आइए सुनते हैं अगला देशभक्ति गीत दिल जले फिल्म से, कुमार सानू और आदित्य नारायण की आवाजों में।
1: शाम, तुझे पता है तुम्हारे बाबूजी को कभी प्यार का पैगाम भेजना ही नहीं आया।
2: क्या कहती हो शामू की माँ?
1: और क्या, आपको जब भी प्यार जताना होता था हिंदुस्तान का झंडा भेज देते थे।
2: माँ जानती हो बाबूजी ने सबसे ज्यादा प्यार किससे किया है? इस मुल्क से।

वतन के तराने कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गीत सोनू निगम की आवाज में। फिल्म का नाम है काश आप हमारे होते।

0: वित्त वर्ष में 6.6% की वृद्धि का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्ष तक देश की प्रेरणा बनेगा।
1: मैं यहाँ देख रहा हूँ विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहाँ देख रहा हूँ भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके, न हरा सके।
0: गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 11 मई 1998 को 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे, जिनके माध्यम से देश के वैज्ञानिकों ने भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने किया।
1: दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने सोमनाथ महादेव मंदिर में विशेष महापूजा की। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक भी किया। मंदिर के इतिहास में पहली बार शिखर पर 11 तीर्थस्थलों से लाए गए पवित्र जल से जलाभिषेक किया गया। श्री मोदी ध्वजारोहण समारोह में भी शामिल हुए। इस बीच वायुसेना ने एयर शो किया, जिसमें सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम ने सोमनाथ के ऊपर मनमोहक करतब दिखाए। हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की गई। इसके बाद श्री मोदी ने विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन किया। श्री मोदी ने हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान उत्सव के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये उत्सव भारत की शाश्वत ऊर्जा का उत्सव है और सोमनाथ मंदिर भारत की आध्यात्मिक चेतना और आस्था का सशक्त प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर की दृढ़ता और शाश्वत सभ्यतागत महत्व को उजागर करने वाले संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के लेख को साझा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ एक मंदिर से अधिक देश के मजबूत मनोबल का प्रमाण है। अपने लेख में श्री शेखावत ने मंदिर के इतिहास को समकालीन भारत के साथ जोड़ते हुए लिखा है कि सोमनाथ की भावना 21वीं सदी के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। श्री शेखावत ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत वर्ष भर चलने वाले राष्ट्रीय आयोजनों का उल्लेख किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कहा कि राज्य सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में नई सरकार गठित होने के बाद आज हुई मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी।
2: आज पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड ट्रांसफर आज से शुरू होगा। पहले कैबिनेट ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन एमएच

0: बच्चे को ट्रांसफर करेगा, बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा और इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजोल्व हो जाएगा।
1: श्री अधिकारी ने राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना और कई अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन की घोषणा की। राज्य को अब आधिकारिक तौर पर आयुष्मान भारत योजना में शामिल कर लिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ भी प्राप्त किया जा सकेगा। श्री अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश तत्काल लागू किए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल ने चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए वचन के अनुसार विद्यालय की नौकरी के आवेदकों के लिए उम्र सीमा में 5 वर्ष का विस्तार करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। तमिलनाडु विधानसभा में आज 100 से अधिक नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और कैबिनेट सदस्यों, प्रतिपक्ष नेता उदयनिधि स्टालिन, पूर्व मुख्यमंत्रियों इडापड्डी के पलनीसामी तथा ओ पन्नीरसेल्वम ने भी शपथ ली। इसके अलावा प्रमुख सदस्यों प्रेमलता, विजयकांत, सौम्या, अंबुमणि और गठबंधन के नेताओं ने भी शपथ ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। देश भर में नए ढांचे के क्रियान्वयन के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और गांव के समग्र और सतत विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महिला श्रमिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम कार्यस्थलों पर बच्चों की देखभाल के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान करता है। 5 वर्ष से कम उम्र के 5 या अधिक बच्चों की उपस्थिति में उनकी देखभाल के लिए एक महिला श्रमिक को नियुक्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच राष्ट्र को सशक्त बनाने में देशवासियों को साझेदार बनने का आह्वान किया है। हैदराबाद में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से 7 अपील की। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पोलिंग के जरिए आयातित ईंधन के उपभोग को कम करके विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 1 वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह किया। उन्होंने 1 वर्ष के लिए विदेशों में शादी कार्यक्रम और अत्यधिक सोने की खरीदारी न करने का आग्रह भी किया। वोकल फॉर लोकल आंदोलन का नारा बुलंद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भरता और जैविक कृषि भारत के लिए आवश्यक है।
3: भारत सरकार खेतों में डीजल पंप की जगह सोलर पंप की योजना चला रही है। मैं कोविड काल में भी आग्रह करता था कि हम स्थानीय चीजें खरीदें, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चले। हम मेड इन इंडिया चीजें खरीदकर भी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं और हमारे देश में स्थानीय उत्पादन की कोई कमी नहीं है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पश्चिम एशिया की स्थिति की निगरानी करने के लिए गठित अनौपचारिक अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में क्षेत्र की उभरती स्थिति की समीक्षा की गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए नागरिकों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है। आज नई दिल्ली में आयोजित सीआईआई के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष अब भी जारी है और शांति की स्थिति अभी दूर है। देश के लिए आर्थिक मोर्चे पर जिम्मेदारी से काम करना महत्वपूर्ण है।

0: उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों को अपने दैनिक जीवन में उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जहां विदेशी मुद्रा का खर्च कम से कम किया जा सके।
1: हमारे प्रधानमंत्री ने हम सभी नागरिकों से उन सभी चीजों पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है जिनके लिए विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। साथ ही हमें अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करनी भी होगी। ये दोनों बातें एक साथ होनी चाहिए। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम दिए गए आह्वान को गंभीरता से लें।
2: टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स कॉल टू द नेशन।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे में एकीकृत कार्बन कैप्चर और उपयोग संयंत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने भूवैज्ञानिक कार्बन डाइऑक्साइड पृथक्करण के लिए वैज्ञानिक ड्रिलिंग का भी शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस गंभीर वैश्विक समस्या का समाधान विकसित करने के लिए IIT बॉम्बे को बधाई दी और घोषणा की कि इस परियोजना को अगले महीने फ्रांस में होने वाले भारत इनोवेट्स 2026 में प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि वाइस एडमिरल AN प्रमोद ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय विमानों और हवाई अड्डों को निशाना बनाया था। पत्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने श्योपुर जिले में कुनो राष्ट्रीय उद्यान के खुले जंगल में आज दो मादा चीता को छोड़ा। ये दोनों चीते इस वर्ष फरवरी में बोत्सवाना से भारत लाए गए 9 चीतों में से हैं। उन्हें क्वारंटीन और अनुकूलन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद जंगल में छोड़ा गया। इनके आने से देश में चीतों की कुल संख्या 57 हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वैश्विक उथल पुथल के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आज जारी रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में अर्थव्यवस्था में 6.6% की वृद्धि होने का अनुमान है। रिपोर्ट में पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान लगभग 7.2% लगाया गया है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत ने विकास की मजबूत गति को बनाए रखा है। IPL क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे धर्मशाला में खेला जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए BSF को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। SBI के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम में 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्ज़ और DRM फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर।

अब प्रस्तुत है आज के प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम चयनिका। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे सलामी इश्क फिल्म के गाने। आइए सुनते हैं पहला गाना,

साल 2007 में रिलीज हुई इस फिल्म का निर्देशन किया था निखिल अडवाणी ने, जिन्होंने इससे पहले कल हो ना हो जैसी सफल फिल्म भी बनाई थी। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत इसकी विशाल स्टारकास्ट रही। इसमें सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा, अनिल कपूर, जूही चावला, अक्षय खन्ना, आयशा टाकिया, जॉन अब्राहम, विद्या बालन और गोविंदा जैसे कलाकार नजर आए। अब सुनिए सोनू निगम, श्रेया घोषाल, कुणाल गाजावाला, साधना सरगम और शंकर महादेवन की आवाजों में ये गीत।

ये फिल्म छह अलग अलग प्रेम कहानियों को एक साथ जोड़ती है। कहीं पति पत्नी के रिश्ते में दूरियां हैं, कहीं एक तरफा प्यार है, तो कहीं किस्मत दो दिलों को मिलाने की कोशिश करती है। फिल्म का संगीत दिया है मशहूर संगीतकार शंकर एहसान लॉय ने और गीत लिखे समीर ने। इस फिल्म के संगीत को दर्शकों ने काफी पसंद किया और इसके कई गीत चार्टबस्टर साबित हुए। अब आइए सुनते हैं सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर का गाया हुआ ये गीत।

सलामी इश्क की शूटिंग भारत के साथ साथ विदेशों में भी की गई थी। फिल्म के भव्य लोकेशन और शानदार सिनेमेटोग्राफी ने इसे और भी आकर्षक बना दिया। फिल्म में सलमान खान और प्रियंका चोपड़ा की जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया। वहीं गोविंदा ने अपने हास्य अभिनय से कहानी में हल्कापन और मनोरंजन जोड़ा। अब सुनिए कैलाश खेर का गाया हुआ ये गीत।

कार्यक्रम अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। आज हमने बात की सलामेश की कहानी, उसके कलाकारों, संगीत और उन खूबसूरत गीतों की जो आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। अब आइए सुनते हैं चयनिका कार्यक्रम का अंतिम गीत, शान और नेहरा की आवाजों में।

और इन्हीं गीतों के साथ फौजी भाइयों चैनी का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। अभी दिन के 3 बजे से आप सुनेंगे FM रेनबो प्रसारित कार्यक्रमों को। सैनिक भाइयों के हमारे आज के प्रसारण का अब यही होता है समापन। कल 12:10 पर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए निमिषा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम

0: कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
1: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं अनुराधा, लेकर हाजिर हूं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। दोस्तों आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है एडल्ट इम्यूनाइजेशन, यानी वयस्कों या बड़ों में टीकाकरण। आमतौर पर बच्चों के वैक्सीनेशन से लोग परिचित हैं, लेकिन बड़ों में टीकाकरण कितना जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण है, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। आज के विषय से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए, आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर प्रताप सिंह, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल, नई दिल्ली। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
2: बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये अवसर देने के लिए।
1: जी डॉक्टर साहब, आज का जो विषय है उससे जुड़ा पहला मेरा सवाल है कि एडल्ट्स के लिए कौन सी वैक्सीन है जो लेनी चाहिए।
2: जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो WHO ने इस बार थीम दिया है वैक्सीनेशन के लिए, वो थीम है फॉर एवरी जनरेशन वैक्सीन वर्क। ओके, तो जैसे हम जानते हैं कि पीडियाट्रिक एज ग्रुप में जो बच्चों में है हमारे पास ऑलरेडी इस्टेब्लिश टीके हैं, लेकिन अब वैक्सीन जो है वो अडल्ट्स में, वो बुजुर्गों में, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए भी उपलब्ध हैं। तो जैसे हमने देखा कोविड के टाइम में कोविड-19 वैक्सीन जो है वो अवेलेबल थी, जो बड़ों में, बच्चों में, सभी को दी गई। हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, निमोनिया के लिए जो है निमोकोकल वैक्सीन है, पोलियो की जो वैक्सीन है वो यूजुअली पीडियाट्रिक एज ग्रुप में दी जाती है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट्स होते हैं जो अडल्ट्स में भी दी जाती हैं। ठीक है, बुजुर्गों के लिए जैसे अभी जूस्टर वैक्सीन अभी अवेलेबल हो गई है पिछले 1-2 साल में, वेरिसेला वैक्सीन है, वेरिसेला यूजुअली एडल्ट्स और पीडियाट्रिक एज ग्रुप में यूज होती है। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं, जैसे MMR वैक्सीन है यूजुअली पीडियाट्रिक एज ग्रुप में है, लेकिन कुछ ग्रुप में जो है वो बड़ों में भी दी जाती है। येलो फीवर वैक्सीन है जिसे हम ट्रेवलर वैक्सीन भी बोलते हैं, जैसे किसी स्पेसिफिक ऐसे रीजन में आपको ट्रेवल करना है आउट ऑफ कंट्री, ठीक है, जहां पे येलो फीवर का एंडेमिसिटी है, तो उसमें जो है येलो फीवर वैक्सीन जो है हमारे कंट्री में, हमारे देश में दी जाती है।
1: जी, बहुत सारी बातें हैं अभी आपसे जानने को, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है। फिलहाल यहाँ लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, आगे की बातें इसके बाद।

0: आज हम चर्चा कर रहे हैं वयस्कों में टीकाकरण पर। मैं जानना चाहूंगी, मेरा अगला सवाल है कि किन बीमारियों से बचाव संभव है टीकाकरण के द्वारा?
1: जी देखिए, बहुत सारे जो बैक्टीरियल डिजीजेज होते हैं, वायरल डिजीजेज होते हैं, उनमें ये जो टीकाकरण है वो काफी हद तक फायदेमंद पाया गया है। ठीक है, जैसे हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस जो पीलिया होता है, लीवर की डिजीजेज होती हैं। ठीक है, अगर आप समय रहते हुए वैक्सीनेशन करा लेंगे तो आगे फ्यूचर में जो है पीलिया होने के चांसेस बहुत कम है। निमोनिया है, निमोनिया के लिए हिप वैक्सीन अवेलेबल है, निमोकोकल वैक्सीन अवेलेबल है, और ये जो वैक्सीन हैं ये बहुत अच्छा काम करती हैं जब किसी को अंडरलाइन कोमॉर्बिडिटीज हो या कोई और तकलीफ हो, जैसे डायबिटिक पेशेंट हैं, सीकेडी वाले पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, बुजुर्ग हैं, अगर उनको ये टाइमली वैक्सीन दी जाएं तो उनमें जो इन्फेक्शन होने की वजह से सेहत पे जो फर्क पड़ता है उससे बहुत अच्छा बचाव होता है। ठीक है, अभी रिसेंटली जो है डेंगू के लिए भी वैक्सीन जो है हमने अप्रूव की है। जैसे देखते हैं हमारे यहाँ डेंगू का एपिडेमिक 2 से 3 साल में एक बार आता रहता है, दिल्ली एनसीआर या बाकी जो और भी प्रदेश हैं उनमें। अभी रिसेंटली जो है डीसीजीआई ने क्यू डेंगा करके वैक्सीन है जो एडल्ट्स में और बच्चों में, उसको अप्रूव किया है। ठीक है, तो ये अभी अवेलेबल हो गया है।
0: तो आगे हम बात करें डॉक्टर साहब, तो देखा ही जाता है कि जब बचपन होता है तभी वैक्सीनेशन हो जाता है, लेकिन क्या उसका असर बड़े होने तक बना रहता है या दोबारा से, समझ लीजिए कि अगर किसी ने बचपन में नहीं कराया तो क्या बड़े होकर भी वो सारे वैक्सीनेशन कराए जा सकते हैं?
1: देखिए, जो वैक्सीनेशन है हमारा तो बहुत एस्टेब्लिश टीकाकरण प्रोग्राम है, जिसे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बोलते हैं, वो जन्म से ही स्टार्ट हो जाता है हमारे जो देश में। ठीक है, तो जीरो से जैसे ही बर्थ होगा बच्चे का उसी समय से टीकाकरण स्टार्ट होता है। लेकिन जो वैक्सीन है, कुछ जो वैक्सीन होती हैं उनके द्वारा जो इम्यूनिटी डेवलप होती है, ठीक है, उनका एक समय होता है, टाइम ड्यूरेशन होता है। कुछ वैक्सीन होल लाइफ काम करती हैं, कुछ वैक्सीन हैं जो 3 साल काम करती हैं, कुछ वैक्सीन हैं जो 10 साल काम करती हैं। तो जो होल लाइफ काम करती हैं वैक्सीन, उनसे तो प्रोटेक्शन आपका अडल्ट में या बुजुर्ग अवस्था तक भी रह सकता है, लेकिन जिनका इम्यूनिटी प्रोटेक्शन 5 साल का है, 10 साल का है, ऐसे केसेस में जो है बूस्टर वैक्सीनेशन किया जा सकता है, जिससे उनका जो प्रोटेक्शन का टाइम है वो बढ़ जाए। ठीक है, तो ओवरलैप तो डेफिनेटली होता है, जिनका वैक्सीनेशन शेड्यूल कंप्लीट हुआ है चाइल्डहुड में, तो एडल्टहुड में उनका प्रोटेक्शन उनको मिलता है।
0: जी, तो श्रोताओं, आज हम आपको जागरूक कर रहे हैं कि यदि आप भी वयस्क हैं और आपने बचपन में ध्यान नहीं दिया है, वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, तो क्या वैक्सीनेशन आपके लिए जरूरी है, टीकाकरण कौन सा आप करवा सकते हैं और किस उम्र तक करवा सकते हैं, तमाम जानकारी डॉक्टर साहब आपको दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, बात हम सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि यही पहला चरण होता है बच्चा जब धरती पर आता है, तो उस दौरान माँ को कौन कौन से वैक्सीनेशन जरूरी होते हैं?
1: देखिए, प्रेगनेंसी में कोई भी लाइव वैक्सीन आपको नहीं लेनी है, अवॉइड करनी है। जो एस्टेब्लिश हमारा प्रोग्राम है प्रेगनेंसी में वैक्सीनेशन के लिए, वो 2 वैक्सीन को एब्सोल्युटली जो है उसमें रिकमेंड करता है। एक फर्स्ट वैक्सीन है, उसमें हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है, और सेकेंड जो वैक्सीन है वो टेटनेस के लिए वैक्सीन है। तो ये तो एब्सोल्यूट हो गया कि जो आपको लेना ही लेना है। इसके अलावा जो नॉन लाइव वैक्सीन्स हैं वो जरूरत के हिसाब से प्रेगनेंसी में भी दी जा सकती हैं।
0: HPV वैक्सीन भी आजकल चर्चा में है, क्या प्रभाव होता है इसका, इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
2: मैम नमस्कार।
0: जी नमस्कार सर, अपना नाम बताएं।
2: नमस्कार जी।
1: नमस्कार नमस्कार
2: जी, मैं यामिन भाई, रेडियो वाला
0: जी। बिल्कुल, आप हमारे नियमित

0: फिर भी सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन जो 40 के दौरान क्या क्या टीके आप ले सकते हैं, मोस्टली जो एडल्ट वैक्सीन्स हैं वो सभी जो है 40 के उसमें ले सकते हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए है, बी है, अभी डेंगू का वैक्सीन आ गया है, तो ये वैक्सीन्स हैं। ये वैक्सीन्स जो है प्राइवेट सेक्टर में अवेलेबल हैं, कुछ वैक्सीन्स हैं जो सरकारी सेक्टर में भी अवेलेबल हैं, तो आप ये वैक्सीन्स ले सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, मेरा सवाल था एचपीवी को लेकर, लेकिन अभी जो इन्होंने सवाल किया, मैं जानना चाहूंगी कि इन्होंने 40 के बाद पूछा, अगर सही समय पर वैक्सीनेशन नहीं हो पाता है तो क्या कुछ अवधि होती है जिसके दौरान वैक्सीनेशन करवाया जा सके?
0: यूजली जो एडल्ट वैक्सीनेशन है वो 18 के बाद जो है कंसिडर करते हैं, लेकिन कुछ वैक्सीन्स हैं जो हम 50 प्लस में 50 साल के बाद देते हैं, जैसे जूस्टर वैक्सीन्स हैं, ठीक है, निमोकोकल वैक्सीन्स हैं, ये हम 50 के बाद एडवाइस करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोमॉर्बिडिटी है, कोई अंडरलाइन डिजीज है, जैसे अनकंट्रोल हाइपरटेंशन है, सीकेडी है, क्रॉनिक किडनी डिजीज है आपको, हार्ट का कोई भी एलिमेंट है आपको, या लीवर डिजीज है, ठीक है, या रिकरेंट आपको निमोनियाज होते हैं, तो ऐसे केसेस में आप पहले भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। इस वैक्सीन लगवाने से आपको क्या होगा कि जो इम्यूनिटी है आपकी वो थोड़ा सा पहले डेवलप होगी, बूस्ट हो जाएगी आपकी इम्यूनिटी, और आपको जो बार बार जो है हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ता है या बीमार हो जाते हैं, उससे बहुत आपको जो है इससे फायदा मिलेगा।
1: डॉक्टर साहब, बात कर लेते हैं एचपीवी वैक्सीन की, क्या कहना चाहेंगे?
0: अभी जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब ने जो है जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन है उसको 28 फरवरी को लॉन्च किया है अभियान, लेकिन अभी जो ये अभियान में वैक्सीन दी जा रही है वो 14 से 15 साल की बच्चियों को दी जा रही है, ठीक है। ये ह्यूमन पेपिलोमा एचपीवी वैक्सीन ऑलरेडी अवेलेबल थी, उसमें जो है ये वैक्सीन 14 साल से लेके 25 साल तक, और कुछ केसेस में जो है ये 45 ईयर तक भी दी जा रही थी, और कभी कभी जो है जो मेल्स हैं, पुरुष हैं, पुरुष में भी ये वैक्सीन दी जाती है, ठीक है। लेकिन जो अभी जो अभियान चल रहा है, अभी अभियान में जो वैक्सीन दी जा रही है ये केवल 14 और 15 साल की बच्चियों को दी जा रही है, ठीक है। ये बहुत सारे जो सरकारी अस्पताल हैं, डिस्पेंसरीज हैं, सीएससीज हैं, वहां पे अभी फ्रीली अवेलेबल हैं, जो भी जो है इस एज ग्रुप में आते हैं, जिन्होंने अपना 14th बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है अपना, वो जो है विजिट कर सकते हैं और फ्री में इस सेवा का।
1: 14 से किस एज ग्रुप तक लगवाया जा सकता
0: है? अभी जो अभियान है वो 14-15 ईयर के लिए है, ठीक है, अदरवाइज जो है आप इसे 25-26 साल तक भी लगवा सकते हैं।
1: जी, आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब। हमारे पास मैसेज आया हुआ है बिजिंदर जी का, दिल्ली से लिख रहे हैं कि अगर किसी को इम्यूनिटी कम वाली कोई बीमारी है उनको कौन सी वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए और उनके उसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये जानना चाहते हैं। साथ ही इनका एक सवाल और भी है कि कितने परसेंट बीमारी ना लगने के चांसेस रहते हैं अगर वैक्सीनेशन हो जाता है तो?
0: देखिए, जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक है, ठीक है, जैसे इम्यूनिटी वीक होने के कारण हो सकते हैं कि किसी को कोमॉर्बिडिटी है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस है, किसी को एचआईवी का इन्फेक्शन हुआ है और वो ट्रीटमेंट पे, कैंसर के मरीज हैं, कीमोथेरेपी ले रहे हैं, रेडियोथेरेपी ले रहे हैं, ऐसे जो मरीज होते हैं उनकी जो इम्यूनिटी होती है वो वीक होती है। तो ऐसे पेशेंट्स को जो लाइव वैक्सीन होती हैं, ठीक है, लाइव वैक्सीन जैसे एमएमआर की वैक्सीन है, येलो फीवर वैक्सीन है, ये अवॉइड करना चाहिए, ये नहीं लेना है, क्योंकि ये जो है फायदा ना करके नुकसान होने के चांसेस उसमें ज्यादा है, ठीक है। तो जो नॉन लाइव वैक्सीन है या किल्ड वैक्सीन बोलते हैं उनको या एटेन्यूटेड वैक्सीन बोलते हैं, ऐसी वैक्सीन ही प्रीफर करनी चाहिए जिन पेशेंट्स की इम्यूनिटी लो है। वैक्सीन देने के बाद आपने पूछा कि कितने परसेंट में प्रोटेक्शन होगा या 100% प्रोटेक्शन होगा वैक्सीन के बाद, तो ऐसा है जो नॉर्मल पर्सन है जो इम्यून कॉम्पिटेंट है तो उसमें 85-94% जो है पेशेंट वो इम्यूनिटी डेवलप करते हैं, वो अच्छा जो है रेस्पॉन्ड करते हैं, सीरो पॉजिटिविटी आती है। लेकिन कुछ 1% होता है, यानी 5% है, 6% लोग हैं कि बिकॉज जेनेटिक मेकअप ऐसा है उनका या अंडरलाइन कोई ऐसा जो है उनको कोई डिजीज है, हिडन है, ठीक है, तो वो ग्रुप जो है उस लेवल की इम्यूनिटी जो है डेवलप बॉडी में नहीं कर पाता है। तो इसको कंफर्म करने के लिए जो है आप एंटीबॉडी टिटर्स भी करा सकते हैं कि भाई मेरा जो है इम्यूनिटी कितने लेवल का डेवलप हुआ है, वो प्रोटेक्टिव रेंज में है कि नहीं है। यूजुअली जो इम्यून कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं जिनकी इम्यूनिटी वीक है उसमें ये रेस्पॉन्स थोड़ा सा स्लो होता है या लो होता है, तो ऐसे पेशेंट को जरूर अपना जो है जो एंटीबॉडी टीटर है वो एक बार चेक कराना चाहिए। वो जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं जिनका इम्यून सिस्टम बिल्कुल अच्छा है, ठीक है, उनको ये टीटर कराने की कोई जरूरत नहीं है, दे आर एब्सोल्युटली फाइन।

0: are doing well, they are protected also.
1: जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना शुभ नाम बताएं।
2: नमस्ते मैम, मेरा नाम उमेश कुमार है। नमस्कार डॉक्टर साहब।
0: नमस्कार जी।
1: जी उमेश जी, क्या सवाल है आपका? जी
2: मेरा डॉक्टर साहब पहला क्वेश्चन है कि अगर पहला क्वेश्चन ये है कि हेपेटाइटिस बी और सी, क्या इन दोनों की वैक्सीन है? और अगर किसी को हेपेटाइटिस सी हो जाए तो इलाज करवाने के बाद उसे लगवाना चाहिए वैक्सीन या पहले लगवा लेनी चाहिए, ये पूछना है।
0: जी उमेश जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। हेपेटाइटिस बी के लिए हमारे पास बहुत पहले से वैक्सीन अवेलेबल हैं। हेपेटाइटिस सी के लिए हमारे पास कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हेपेटाइटिस सी का बहुत अच्छा इलाज उपलब्ध है, अवेलेबल है। हेपेटाइटिस सी का इलाज जो है आप 3 महीने और ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में वो आपका जो हेपेटाइटिस सी का जो वायरस है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, ठीक है। हेपेटाइटिस सी का ट्रीटमेंट कराने के बाद आप हेपेटाइटिस बी और ए की वैक्सीन जो है वो लगवा सकते हैं, ठीक है। वो आपको जो है फ्यूचर में उनसे प्रोटेक्ट करेगी, बचाएगी।
1: डॉक्टर साहब, यशपाल जी द्वारका दिल्ली से हमें लिख रहे हैं कि नाइस टॉपिक, माय क्वेश्चन इज विच एंड व्हेन वैक्सीन इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ हेल्दी मैन एंड वुमेन आफ्टर द एज ऑफ 60 इयर्स एंड द साइड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीन इफ एनी, थैंक यू।
0: ये बहुत कॉमन सवाल है, सभी का यही सवाल होता है कि कौन कौन सी वैक्सीन हैं जो 60 प्लस एज ग्रुप में हमको लगवानी चाहिए, ठीक है। यूजुअली देखा गया है कि जो वैक्सीन का इफेक्ट है, वैक्सीन्स का इफेक्ट जो अच्छा इफेक्ट है वो 80 साल से पहले पहले तक है, क्योंकि इसमें क्या है कि हमारे जो इम्यून सिस्टम है बॉडी में उसका भी वीनिंग हो रहा है। उस तरीके से बॉडी रेस्पॉन्ड नहीं करेगी जैसे एक 40 साल में 50 साल में करती है। तो यूजुअली जो वैक्सीनेशन है वो 80 से पहले ही कराना चाहिए, 80 के बाद जो है इट शुड बी अवॉइडेड। कभी कभी 80 प्लस में वैक्सीनेशन कराने से नुकसान भी हो सकता है। तो अब बात आती है कि भाई 60 प्लस वाले में कौन सी वैक्सीन अवेलेबल है, कौन कौन सी हमें लगवानी चाहिए। तो हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस ए है, अभी जो है डेंगू की वैक्सीन लॉन्च हुई है, नीमोकोकल वैक्सीन अवेलेबल है, हिप वैक्सीन है निमोनिया के लिए, ठीक है। ये सारी वैक्सीन अवेलेबल हैं एडल्ट्स के लिए। टेटनस की वैक्सीन हैं, टेटनस जो है टाइम बाउंड है, इसको आप लगवा सकते हैं। और एस सच जो है ये ऑल वैक्सीन आर सेफ, ये सारी जो है वेल टेस्टेड वैक्सीन हैं, पहले भी लगाई जा चुकी हैं, अभी लगवा रहे हैं। तो किसी भी वैक्सीन से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे वैक्सीन देने के बाद सभी में जो रेस्पॉन्स है वो सिमिलर नहीं है, सेम नहीं है। कुछ अच्छा रेस्पॉन्ड करते हैं, कुछ स्लो रेस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। तो उसमें ऐसे केसेस में क्या है कि कभी कभी आपको बूस्टर वैक्सीनेशन की भी जरूरत पड़ती है।
1: डॉक्टर साहब, जैसे बच्चों का कार्ड बन जाता है शुरुआती दौर में ही कि ये लगवाना ही है, ऐसा बड़ों के साथ क्यों नहीं है, या ऐसा कोई प्रोसेस होना चाहिए आपके नजरिए से? क्योंकि बड़ों को अक्सर जब पूछा जाता है तो ज्यादातर लोग ऐसे ही मिलेंगे जो कहेंगे कि नहीं, वैक्सीनेशन के बारे में मुझे कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, क्या कहना चाहेंगे?
0: अनुराधा जी, बहुत ही आपने अच्छा एक सवाल पूछा है और एक सवाल उठाया भी है, ठीक है। हमारे पास जो पीडियाट्रिक एज ग्रुप है जो बच्चों के लिए है वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज टीकाकरण प्रोग्राम है, लेकिन बड़ों के लिए अभी जो है सरकार हो सकता है कि फ्यूचर में इस पे काम करें कि वो डेडिकेटेड जो है इस तरीके से एडल्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी लेके आए या एडल्ट वैक्सीनेशन क्लिनिक्स ओपन करे गवर्नमेंट सेक्टर में भी। तो अभी इस्टेब्लिश जो है इस तरीके से कोई प्रोग्राम या शेड्यूल नहीं है। जो वैक्सीन हैं वो कभी कभी नीड बेस्ड लगाई जाती हैं कि कोई जो है बाहर ट्रेवल कर रहे हैं या कोई कोमॉर्बिडिटी है या कोई जो है फिजिशियन उनके इतने एक्टिव हैं कि वो उनको एडवाइस करते रहते हैं टाइमली कि भाई अब आप जो है डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, या आपको हार्ट डिजीज है, या जैसे कोई नई वैक्सीन अवेलेबल होती हैं लाइक अभी जैसे जूस्टर वैक्सीन अभी पिछले साल एक दो साल पहले आई है। तो जितने भी वो 50 प्लस वाले पेशेंट हैं, खासकर जो डायबिटिक पेशेंट है, हार्ट डिजीज वाले हैं, ऐसे पेशेंट्स के लिए जो उनके फैमिली फिजिशियन हैं उनके एडवाइस पे जो है लोग ले रहे हैं वैक्सीन। बट अभी जो है हमारे पास इस्टेब्लिश गवर्नमेंट सेक्टर में एडल्ट वैक्सीनेशन के लिए प्रोग्राम नहीं है।
1: डॉक्टर साहब, सरकारी चीजों की अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में क्या मतलब सरकार सुविधाएं दे रही है या किस तरह से जागरूक कर रही है, और गैर सरकारी संस्थाएं भी क्या इस ओर प्रयासरत हैं?
0: देखिए, गैर सरकारी है जो प्राइवेट सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है या एनजीओज हैं, ठीक है, वो अवेयरनेस में काफी हेल्प करते हैं। क्योंकि अभी जो एडल्ट वैक्सीनेशन का अवेयरनेस लेवल है वो कॉमन पीपल्स में थोड़ा सा कम है. एक वैक्सीन हेजिटेंसी भी है उनको, ठीक है, उनको लगता है हम हेल्दी हैं, अभी हमें वैक्सीनेशन की जरूरत

0: नहीं है, या उसका जो एक फ्यूचर बेनिफिट है या फ्यूचर प्रोटेक्शन है उसको अभी वो उस लेवल पे समझ नहीं रहे। थोड़ा सा जो है अवेयरनेस बढ़ाने की और जरूरत है, जिसमें एनजीओज हैं या जो प्राइवेट सेक्टर है वो काफी काम करते हैं। और गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर भी पैरेलली जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है। जो बहुत सारी वैक्सीन हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल है, जो पीडियाट्रिक एज ग्रुप में भी दी जा चुकी हैं और एडल्ट्स में भी दी जा रही हैं। रिसेंटली जैसे अभी जो है ह्यूमन पेपिलोमा वैक्सीन जो है ये अभी टीनएजर्स के लिए, जो 14-15 साल के बच्चों के लिए, बट ऑलरेडी ये एडल्ट्स के लिए पहले से अवेलेबल थी।
1: आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब, जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन बड़ा जरूरी है, जागरूक हो जाना चाहिए लोगों को, सरकार भी प्रयासरत है और गैर सरकारी संस्थाएं भी अपनी ओर से प्रयास कर रही हैं, तो हम शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि गर्मी का मौसम है, हो सकता है कि हमारी चर्चा से आज से ही लोग जागरूक हो जाएं। गर्मी का मौसम है तो क्या वैक्सीनेशन जरूरी है इस मौसम में?
0: देखिए, जो सीजनल वैक्सीनेशन है ऐसा तो कुछ कोरिलेशन नहीं है, बट एज ग्रुप में अगर आप आते हैं, ठीक है, एज ग्रुप में है तो आपको वैक्सीनेशन कराना चाहिए। एज ग्रुप को हम जैसे डिवाइड कर सकते हैं, 18 से 40 एज एज ग्रुप है, फिर 50 वाले एक एज ग्रुप है, फिर 50 से 65 वाला है एक एज ग्रुप है, ठीक है। तो इसमें अगर एज ग्रुप में आप आ गए हैं और पहले आपने वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो हमारी तो यही सलाह है कि आपको वैक्सीनेशन कराना चाहिए। और खासकर वो एडल्ट्स जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, डायबिटीज है उनको, या सीकेडी है उनको, या क्रॉनिक लीवर डिजीज है, या कोई और भी तकलीफ है उनको, ये बार बार निमोनिया होता है, उनको वैक्सीनेशन जरूर कराना चाहिए।
1: जी हाँ, तो श्रोताओं लगातार हम आपको जागरूक कर रहे हैं कि वयस्कों में टीकाकरण क्यों जरूरी है और कितना महत्वपूर्ण है। यदि आपको लगता है कि आपका भी कोई सवाल है तो हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं। फिलहाल यहाँ लेंगे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: जी हाँ, FM रेनबो पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, और इस कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ अनुराधा, और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर प्रताप सिंह जी, जिनसे आज हम चर्चा कर रहे हैं एडल्ट

0: इम्यूनाइजेशन यानी कि वयस्कों में टीकाकरण पर। डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं और जो हमारा आज का विषय है उसको लेकर आगे जो चर्चा है, मैं जानना चाहूंगी आपसे कि हेपेटाइटिस बी का जो टीका है वो क्या बड़ी उम्र में भी लगवाया जा सकता है?
1: जी, ऑलरेडी मैंने अभी हमने डिस्कस भी किया है कि जो हेपेटाइटिस बी का जो टीका है वो किसी भी एज ग्रुप में लगा सकते हैं
0: जी।
1: लेकिन थोड़ा सा जो एल्डरलीज हैं उसमें जो रेस्पॉन्स है, सीरो पॉजिटिविटी है, वो थोड़ा सा कम हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आपको या तो टीटर जो है उसका लेवल कराना पड़ेगा टू कंफर्म कि भाई प्रोटेक्शन जो है वो एडिक्वेट है या नहीं है।
0: हेपेटाइटिस को लेकर हमारे पास मैसेज भी आ रहे हैं लगातार, और ये एक मैसेज हमारे पास सरोज मल्होत्रा जी का आया हुआ है मेरठ से। हेपेटाइटिस बी हो गया हो तो क्या उसके बाद वैक्सीन लगवाई जा सकती है, फायदा होता है, ये जानना चाहती हैं।
1: जी, जो हेपेटाइटिस बी है, एडल्ट्स में अगर हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हो गया है तो 90-95% जो केसेस हैं उसमें रिजॉल्व हो जाता है और इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। ऐसे केसेस में वैक्सीन देने का कोई बेनिफिट नहीं है।
0: डॉक्टर साहब, अगर बात करें वैक्सीनेशन की तो कितने अंतराल पर करवाना चाहिए, मतलब जरूरी है कि करवाते रहें?
1: वैक्सीन का एक शेड्यूल है जो आमतौर पर हम देखते हैं कि जो दो वैक्सीन हैं ठीक है उनके बीच में मिनिमम 4 वीक टू 6 वीक का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप दो वैक्सीन एक साथ ले रहे हैं तो उनका जो साइट है, जो वैक्सीन जहां पे आप लगा रहे हैं, साइट डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम जो अंतराल है वो कम से कम 1 महीना से 1.5 महीने का रखना है आपको दो वैक्सीन के बीच।
0: ये तो हुआ कि हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए। एक बात आती है कि एनिमल पेट के जो ओनर्स हैं क्या उनमें भी वैक्सीनेशन बड़ा जरूरी है कि क्योंकि देखा ये जाता है कि कभी कभी जो हमारे पेट्स होते हैं वो अपने ओनर को ही बाइट कर लेते हैं, तो इस स्थिति में कितने अंतराल पर लगवाना चाहिए या कोई लगवाता है तो कितने समय तक इफेक्टिव रहता है वो टीका?
1: यूजुअली जो है वैक्सीन रेबीज के लिए अवेलेबल है और पेट को भी जो है वो वैक्सीन दी जाती है। जो पेट ओनर्स हैं वो प्रोफाइलेक्सिस ले सकते हैं बट जरूरी नहीं है अगर आपने पेट को वैक्सीन लगवाया हुआ है। ठीक है, बट रेबीज के लिए हमारे पास एस्टेब्लिश वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, उसका शेड्यूल है, 5 वैक्सीन देते हैं उसमें 0, 3, 5, 7, 28 डेज पे टोटल 5 वैक्सीन हैं। और अगर किसी ने पहले वैक्सीन ली हुई है और उनको बाय चांस डॉग से या किसी से एक्सपोजर हो जाए ठीक है तो उनको भी जो है मिनिमम 2 डोज लेना चाहिए, और अगर किसी ने नहीं ली है तो उनको कंप्लीट जो है 5 डोजेज लेना है।
0: तो ये जरूरी नहीं है कि अगर वैक्सीन पेट को लगवा दी है तो ओनर लगवाए, ये जरूरी नहीं माना
1: जाता, ये जरूरी नहीं
0: अनुसार
1: नहीं, ये बिल्कुल।
0: डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन के बाद किस तरह की सावधानी जरूरी होती है?
1: यूजुअली जो वैक्सीन हैं दे आर टोटली सेफ। ठीक है, एक तो कभी भी जो है वैक्सीन अगर सेफ नहीं है तो कभी गवर्नमेंट उनको अलाउ नहीं करेगी, ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। और वैक्सीन से माइल्ड फीवर, लोकल रिएक्शन, रेडनेस हो सकता है बट वैक्सीन आर टोटली सेफ। ठीक है, लेकिन कोई एक्टिव अगर तकलीफ चल रही है, बुखार चल रहा है आपको, रनिंग नोज है, निमोनिया है, ठीक है, ऐसे केसेस में यू कैन वेट फॉर वैक्सीनेशन। इमीडिएटली जाने की जरूरत नहीं है, पहले आप अच्छे से रिकवर हो जाइए और रिकवर होने के भी कम से कम 1 से 2 वीक के बाद आप जो है वैक्सीन के लिए प्लान कीजिए। ठीक है, एक्टिव इन्फेक्शन में आपको वैक्सीन जो है वो अवॉइड करना है। ठीक है, और बहुत मामूली जो है कभी कभी फीवर वगैरह आ जाता है या कभी कभी हल्का फुल्का बॉडी एक है बट वैक्सीन आर टोटली सेफ, टेस्टेड है सब ऑल वैक्सीन,
0: तो उसके बाद किसी तरह की सावधानी की जरूरत नहीं रह जाती।
1: एक बार वैक्सीन आपको लग गया है, 3-4 दिन हो गए हैं, कोई बॉडी एक नहीं है, फीवर नहीं है, तो ये अज्यूम करते हैं कि भाई आप जो है टोटली सेफ हैं।
0: डॉक्टर साहब, हर्पीस की जो प्रॉब्लम है वो भी एडल्ट्स में काफी देखने को मिलती है, मौसम बदलते ही उसका असर देखने को मिलता है, तो किस तरह का वैक्सीनेशन करवाना चाहिए ऐसी स्थिति में और क्या क्या उम्र होती है इसके लिए?
1: जो ये हर्पीज है इसके लिए 2 तरह की वैक्सीन अवेलेबल हैं। एक है जो बच्चों के लिए है, उसे वेरिसेला वैक्सीन बोलते हैं। ठीक है, वेरिसेला क्या है, लाइव वैक्सीन है। ठीक है, और दूसरा है जूस्टर वैक्सीन। ठीक है, जो जूस्टर वैक्सीन है वो जो 50+ एज ग्रुप है उनके लिए है, क्योंकि जो इनका जो मैकेनिज्म है, जो काम करने का तरीका है, दोनों का अलग है। जो वेरिसेला वैक्सीन है, वेरिसेला क्या है कि प्राइमरी प्रिवेंशन है। ठीक है, जो चिकन पॉक्स हम बोलते हैं उसको प्रिवेंट करता है, लेकिन जो जूस्टर वैक्सीन है जो हम 50+ में दे रहे हैं वो जो हमारा बॉडी में लेटेंट इन्फेक्शन है या एक कहते हैं इसे मुझे कहना चाहिए कि कोई वायरस जो है वो डोरमेंट पड़ा हुआ है।

0: छुपा हुआ बैठा हुआ है कि बॉडी की इम्यूनिटी कम होगी तो मैं एक्टिवेट हो जाऊंगा, तो उस केसेस में जो है बूस्टर वैक्सीन दी जाती है।
1: मेनिंजाइटिस हेपेटाइटिस की बात करें तो इस स्थिति में कौन सी वैक्सीनेशन जरूरी होगा?
0: देखिए मेनिंजाइटिस के लिए पीडियाट्रिक एज ग्रुप में है निमोकोकल वैक्सीन है, ठीक है, या मेनिंगोकोकल वैक्सीन भी अवेलेबल है मेनिंजाइटिस के लिए। हेपेटाइटिस के लिए हेपेटाइटिस ए वैक्सीन है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है, और कभी कभी जो है वेरिसेला हेपेटाइटिस भी हो सकता है, ठीक है, तो ये वैक्सीन है अवेलेबल है।
1: मौसम के अनुसार ही वैक्सीनेशन की आवश्यकता होती है या किसी भी मौसम में, जैसा कि आपने बताया कि विदेशों में है तो वहाँ का क्लाइमेट चेंज होता है, तो वहाँ और यहाँ में किसी तरह की सावधानी की जरूरत होती है?
0: जो निमोनिया की जो वैक्सीन्स आती हैं निमोकोकल वैक्सीन्स, वो यूजुअली जो है जो स्ट्रेन फ्लो करता है एनवायरनमेंट में, ठीक है, जैसे तो वो वैक्सीन्स जो हैं कभी कभी अप्रैल और मई में दी जाती हैं और अगस्त सितंबर में दी जाती हैं, बट हमारे जो है यहाँ पे मोस्टली जो वैक्सीन्स हैं जो सदर्न पैटर्न स्ट्रेन्स होता है वो अगस्त और सितंबर वाले सीजन में या टाइम में मोस्टली दी जाती हैं।
1: रेनू जी का सवाल हमारे पास भोपाल से आया हुआ है। ये लिख रही हैं कि इनको टाइफाइड 2023 में हुआ था और अगेन नवंबर 2023 में इनको हो गया, तो ये जानना चाहती हैं कि किस तरह की वैक्सीन इनके लिए प्रभावी रहेगी।
0: देखिए टाइफाइड की भी वैक्सीन अवेलेबल है लेकिन इनको टाइफाइड हो गया है, ठीक है, तो
1: दो
0: इन्हें तो
1: बार इनको हो चुका है,
0: तो इनको जो है टाइफाइड लेने की जरूरत नहीं है। बार बार टाइफाइड क्यों हो रहा है? क्योंकि टाइफाइड क्या है, सैनिटेशन से रिलेटेड है, तो ये जो है अपना जो वाटर वाली चीजें हैं, अपना आरओ है या जो पानी के इस्तेमाल करते हैं उस पर एक बार जरूर गौर करेंगे, वो बिल्कुल ठीक है, अप टू डेट है, कि उसको भी जो है उसको रिपेयर कराने की या सर्विस कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो टाइफाइड अगर एक बार हो गया है आपको तो टाइफाइड वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं है आपको।
1: जी, ये लिख रहे हैं कि इनकी उम्र 46 साल है और बहुत फिट हैं, हेल्दी हैं, लेकिन इनको जो समस्या है वो आपने बता दिया है कि पानी पर जरूर ध्यान दें कि वो ठीक इस्तेमाल कर रही हैं कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: मैडम, मेरा नाम प्रशांत है।
1: जी प्रशांत जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
2: मैडम, मेरठ उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैडम,
1: बताएं, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं, क्या सवाल है आपका?
2: सवाल मैडम ये है, मैडम मुझे सोराइसिस है मैडम, और मैडम 30 साल से है जब मैं 8वीं कक्षा में था।
1: जी,
2: तो मैडम इसका कोई वैक्सीन या इसका इलाज कोई अभी तक नहीं आया मैडम, कि आगे आने की संभावना है कुछ?
1: जी, डॉक्टर साहब मार्गदर्शन करेंगे आपका।
2: जी मैडम,
0: प्रशांत जी, जो सोरियासिस है वो एक स्किन की ऑटोइम्यून डिजीज है, तो इसमें अभी वैक्सीन्स तो नहीं है डायरेक्टली कि जो डिजीज को ही बेनिफिट करे, लेकिन सोरियासिस की वजह से बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो थोड़ी वीक हो जाती है। ऐसे केसेस में आप अदर वैक्सीन्स आप ले सकते हैं, जो अदर इन्फेक्शंस होते हैं उसमें आपको बेनिफिट या प्रोटेक्शन जरूर मिलेगा, बट सोरियासिस के लिए पर से कोई वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं है।
1: डॉक्टर साहब, ऐसा कोई वर्ग है जिसको वैक्सीन नहीं भी लगवानी चाहिए? क्योंकि हम काफी देर से ये जागरूक कर रहे हैं कि वैक्सीन लगवानी चाहिए, लेकिन कोई ऐसी भी स्थिति है जब नहीं लगवानी चाहिए?
0: देखिए, जो वैक्सीन्स के टाइप हैं, जैसे वैक्सीन लाइव वैक्सीन्स हैं और लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स हैं, किल्ड वैक्सीन्स हैं, ठीक है, ये पेशेंट की कंडीशन पे, उसकी हेल्थ स्टेटस क्या है उसके हिसाब से दी जाती हैं। अगर किसी पेशेंट को कोई कैंसर है, कीमोथेरेपी चल रही है, रेडियोथेरेपी चल रही है, या कोई प्रेग्नेंट लेडी है, या एक्टिव इन्फेक्शन है, तो ऐसे केसेस में आपको जो लाइव वैक्सीन्स हैं वो एब्सोल्युटली नहीं देनी है, नहीं एडवाइस करनी है, ठीक है। एक्टिव इन्फेक्शन है, मान लीजिए किसी को निमोनिया हो गया है, तो एक्टिव इन्फेक्शन में आप कोई वैक्सीन नहीं देंगे जब वो उनकी रिकवरी हो जाए। रिकवरी होने के भी कम से कम 2 हफ्ते बाद जो है आप प्लान करेंगे कि इनको वैक्सीन देनी है, ठीक है।
1: तो श्रोताओं, लगातार डॉक्टर साहब आपको जागरूक कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि किस उम्र में कौन सी आपको टीकाकरण करवाना चाहिए, अगर नहीं करवाया है तो करवा सकते हैं आप। फिलहाल यहाँ लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

श्रोताओं, आज रेडियो डॉक्टर में हम चर्चा कर रहे हैं वयस्कों के टीकाकरण पर। यदि आपका भी कोई सवाल है तो तमाम जानकारी देने के लिए समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर प्रताप सिंह जी, जिनसे आज हम विस्तार से

0: चर्चा कर रहे हैं और जान रहे हैं कि आपके लिए कितना जरूरी है टीकाकरण और कितना महत्वपूर्ण है। हमारे पास डॉक्टर साहब मैसेजेस आ चुके हैं बहुत सारे, जिसमें से मैं एक मैसेज ले रही हूं। इन्होंने लिखा है, इन्होंने नाम तो अपना नहीं लिखा, लिख रहे हैं, नमस्कार डॉक्टर साहब, आई एम फ्रॉम सिक्किम। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी टू डेवलप अ वैक्सीन अगेंस्ट HIV एंड कार्सिनोमा?
1: देखिए, HIV के लिए जो वैक्सीन्स हैं उस पर काफ़ी रिसर्च चल रही हैं, उसमें अभी 100% सक्सेस नहीं मिला है, ठीक है, बट फॉर मैनी ईयर्स, नियर अबाउट 10 ईयर्स HIV वैक्सीनेशन पे काम चल रहा है कि अभी कोई ऐसा वैक्सीन मिल जाए कि भाई उसमें 100% प्रोटेक्शन हो जाए, बट अभी जो है इट्स नॉट सक्सेसफुल, ठीक है। और जो कार्सिनोमा के लिए इन्होंने बोला है, कार्सिनोमा में एक होता है कि जो डायरेक्टली ऑन्कोजींस को अफेक्ट करे ऐसी वैक्सीन, एक है जो इनडायरेक्टली जैसे हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस बी अगर आपने वैक्सीन लगवा ली है तो फ्यूचर में जो लीवर का कैंसर है उसके होने के चांसेस जो है ना के बराबर हो जाते हैं। जैसे अभी रिसेंटली नई वैक्सीन ये आई है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन, ठीक है, तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो वैक्सीन्स है, ये जो हमारा जैसे मेल है, मेल गले का है, मुंह का है, ठीक है, उसमें जो है ये काफी हाई रिस्क होता है, ठीक है। और फीमेल्स में जो सर्वाइकल कैंसर है, ठीक है, जो सर्विक्स का कैंसर है, वो 45-50 की एज में है, उसको प्रोटेक्ट करता है। तो इनडायरेक्टली जो वैक्सीन हैं वो डिजीज से बचा रही हैं और आने वाले जो फ्यूचर में कैंसर होने के चांस हैं उनसे भी बचा रही है, ठीक है। तो ये इनडायरेक्टली प्रोटेक्शन है आपको, डायरेक्टली अभी ऐसा वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, बट डेफिनेटली रिसर्च इज गोइंग ऑन कि हमारी कोई ऐसे ऑनको वैक्सीन बन जाए कि हमें जो है वो किसी तरह के कैंसर से हमें पूरा तरीके से बचाव करे।
0: डॉक्टर साहब, जैसा कि ये देखा जाता है कि हमारे यहाँ नॉर्मल ये थिंकिंग है कि अगर स्वस्थ हैं तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे में वैक्सीनेशन तो थोड़ा दूर की बात हो जाती है जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि हमारे जो वयस्क हैं उनमें कैसे जागरूकता लाई जाए कि वैक्सीन के प्रति वो जागरूक हो जाए?
1: देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अगर आप स्वस्थ हैं तो बहुत अच्छी बात है, और स्वस्थ आदमी को ही वैक्सीन लेनी चाहिए
0: जी।
1: क्योंकि वैक्सीन जो है वो आज का ट्रीटमेंट नहीं है, वैक्सीन है फ्यूचर में आपको कितना बचाव करेगा।
0: बिल्कुल सही,
1: ठीक है, क्योंकि वैक्सीन की वजह से ही बहुत सारी जो डेथ्स होती हैं या मौतें होती हैं पीडियाट्रिक एज ग्रुप में, वो बचाई जा चुकी हैं। वैक्सीन एक बहुत फ्यूचर का एक बहुत ही कहते हैं कि एक्सरसाइज किया हुआ टूल है। अगर एक इम्यून कॉम्पिटेंट पर्सन, हेल्दी पर्सन वैक्सीन लेता है तो नियर अबाउट 99% वो फ्यूचर के लिए प्रोटेक्टेड है उस डिजीज से, ठीक है। बट क्योंकि जो है हमारे यहाँ पे बहुत सारे कल्चरल बैरियर्स हैं, ठीक है। दूसरा एक जो मेन कंसर्न है एडल्ट वैक्सीनेशन का, जो एडल्ट वैक्सीन है वो थोड़ा सा कॉस्टली है, बहुत सारी जो वैक्सीन है वो अभी जो सरकारी महकमे हैं, सरकारी अस्पताल हैं, उसमें फ्रीली अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो एक इकोनॉमिकल कंसर्न भी रहता है, ठीक है, एक वैक्सीन हेजिटेंसी भी है कि भाई अभी तो बच्चों का है, ये सरकार ने बोला ही नहीं है अभी, ठीक है। तो उस हेजिटेंसी के लिए हमारी बहुत सारी एनजीओज हैं, वो काम कर रही हैं कि इनका जो है आपकी हेल्थ पे फ्यूचर इंपैक्ट कितना होगा, किस तरीके से आज की वैक्सीन फ्यूचर में आपको हेल्प करेगी, ठीक है। हो सकता है वो वैक्सीन आपने आज ली है वो आज नहीं बचा रही है वैक्सीन आपको, उसका जो प्रोटेक्शन है वो आपको महीना दो महीने बाद स्टार्ट होता है और एक साल बाद जो है उसकी फुल इम्यूनिटी रहेगी और यू आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डेट वैक्सीन और डेट वायरसेस।
0: तो ये डॉक्टर साहब ने श्रोताओं आपको जागरूक कर दिया है कि जरूरी नहीं है कि आपको कोई बीमारी हो रही है तो आप जाएं टीकाकरण करवाएं, नहीं, उससे पहले ही आपको जागरूक हो जाना है ताकि कोई बीमारी आपको घेर ही ना पाए। जब आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी तो आप स्वस्थ रहेंगे और फिर आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। और इसी प्रयास में आज हम लगे हुए हैं और आप जागरूक हो जाएं तो हमें लगता है कि हम एक व्यक्ति को भी अगर जागरूक कर पाएंगे तो ये हमारे लिए सफलता की बात होगी। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि क्या कारण है कि वयस्क टीकाकरण अवॉइड करते हैं?
1: जैसे मैंने बताया कि आपने भी इसको जो है बताया है कि एक जो उनको हेल्दी होने का जो एक वो है कि मैं हेल्दी हूं, मैं वैक्सीनेशन के क्यों जाऊं, वैक्सीन तो जो है बच्चों के लिए बनी है, ठीक है। तो एक तो ये बैरियर है, वैक्सीन जो है हेल्दी पर्सन को ही लेना चाहिए, ठीक है। दूसरा है कि अवेयरनेस कम है, अभी उनको लगता है कि जो वैक्सीन हैं वो बीमार आदमी के लिए बनी है या जिनकी इम्यूनिटी वीक है या जिनको कोमॉर्बिडिटी हो गई है उनके लिए वैक्सीन बनी है। नहीं, वैक्सीन जो है ऑल जनरेशन के लिए है, सभी के लिए है, बच्चों के लिए है, एडल्ट के लिए है, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए है, बुजुर्ग के लिए भी वैक्सीन है। बट जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं उनको मैंडेटरी है, उनको वैक्सीन लेना ही लेना।

0: चाहिए। वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है, ठीक है, बट कभी कभी क्या है हमारे कल्चरल बैरियर्स हो जाते हैं, कुछ लोग हैं या उनमें थोड़ा सा हेजिटेंसी होती है कि भाई वैक्सीन से लेने के बाद आपका फर्टिलिटी इफेक्ट हो सकता है, आने वाली जो जनरेशन है वो वीक हो सकती हैं, ठीक है, बट जो है लोकल रीजनल जो हमारे एनजीओज हैं, लीडर्स हैं, उनकी हेल्प से इस अवेयरनेस प्रोग्राम को चलाया जा सकता है और उस हेजिटेंसी को जो है खत्म किया जा सकता है।
1: जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है और हम लगातार श्रोताओं आपसे यही कह रहे हैं कि आप जागरूक होइए और बिल्कुल ये ना सोचिए कि आप बीमार हैं तभी आप टीकाकरण करवाएंगे। नहीं, आपको जागरूक होना है। जब हम अपने बच्चों के लिए जागरूक होते हैं तो अपने लिए भी हमें थोड़ा सा सजग होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें कि टिटनेस का टीका जो होता है, इसके नाम से ज़्यादातर लोग परिचित हैं, और किस स्थिति में इसको लगवाना चाहिए और क्या लगवा कर ही लोग, जैसे कल कारखानों में लोग काम करते हैं उनके लिए तो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है, और कितने समय तक ये इफेक्टिव रहता है?
0: जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। जो टिटनेस का वैक्सीन है वो ऑलरेडी हमारा जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है, तो अगर आपने बचपन में लगा लिया है टिटनेस का वैक्सीन तो नियर अबाउट 10 साल तक जो है ये प्रोटेक्टिव रहता है, ठीक है, उसके बाद जो है आपको एक बूस्टर लगवाना पड़ता है। एडल्ट्स में जैसे आपने नहीं लगवाया है और ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स हैं आपको, आप ऐसे काम में इन्वॉल्व हैं जहां आपको चोट लगती रहती है या स्किन कट गई है, तो ऐसे केसेस में जो टिटनेस का इन्फेक्शन होने का डर होता है, ठीक है, उससे बचाव करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप टिटनेस का वैक्सीन लगवा लें, और एक बार वैक्सीन लगवाने के बाद कम से कम जो है 8 से 10 साल जो है आप प्रोटेक्टिव रहेंगे। उसके बाद जो है अगर उस जॉब में हजार है आपके जॉब में तो 8 से 10 साल के बाद रिपीट कर सकते हैं उसको।
1: जी, तो डॉक्टर साहब, अब आपके नजरिए से इस समय कौन से वैक्सीन जो है वो ट्रायल पर है और संभावनाएं हैं कि आने वाले समय में उनका लाभ हमारे श्रोताओं को मिलेगा और देशवासियों को मिलेगा?
0: मैं सभी को बताना चाहूंगा कि रिसेंटली जो है जो हमारी DCGI है, जो वैक्सीन या दवाओं को प्रमाणित करके अलाउ करती है, तो उन्होंने डेंगू के लिए वैक्सीन को अलाउ किया है अभी, ठीक है, क्यू डेंगा के नाम से जो वैक्सीन है वो अवेलेबल है, वो एडल्ट्स में और बुजुर्ग में वो ये दे सकते हैं। लेकिन अभी क्या है कि थोड़ा सा कॉस्ट हिंड्रेंस है, जो वैक्सीन का कॉस्ट है वो नियर अबाउट 2 से 4 हजार के बीच में वैरी कर रहा है, ठीक है, तो ये जो है एक हिंड्रेंस हो सकता है। दूसरा है कि मलेरिया की जो वैक्सीन है, मलेरिया की वैक्सीन क्या है अभी अंडर रिसर्च है, मलेरिया की वैक्सीन अभी फुल प्रूफ नहीं है, नॉट अवेलेबल इन द मार्केट और इन हॉस्पिटल, ठीक है। पिछले 2 सालों में जैसे जूस्टर वैक्सीन अवेलेबल हुआ, रोटा वायरस जो है बच्चों में जो इन्फेक्शन करता है, डायरिया करता है, वो अवेलेबल हुआ। अभी रिसेंटली जो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के ये वैक्सीन अवेलेबल हुआ है अभी, जो एडोलोसेंट एज ग्रुप की जो गर्ल्स हैं, ठीक है, तो ये न्यूअर वैक्सीन हैं। और HIV की हम बात कर ही चुके हैं, ठीक है, बहुत सारे जो कैंसर्स हैं, कैंसर प्रिवेंटिव जो वैक्सीन हैं, ऑनको वैक्सीन जिनको हम बोलते हैं, उन पे भी काम चल रहा है। बट अभी जो है थोड़ा समय लगेगा, बट हाँ फ्यूचर में हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये वैक्सीन अवेलेबल होंगी और हमारी जो हेल्थ है वो और बेटर रहेगी।
1: जी, तो श्रोताओं, लगातार हम आपको यहाँ पर जागरूक कर रहे हैं इस मंच से कि आप जागरूक रहें और सजग रहें अपनी सेहत के प्रति, क्योंकि सेहत है तभी जीवन में हम कुछ कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ लेंगे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: डॉक्टर साहब, वयस्कों के टीकाकरण पर तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन चलते चलते एक संदेश आपसे उनके लिए भी जाना चाहूंगी जो बच्चों के टीकाकरण के लिए थोड़े से अवेयर नहीं है, क्या कहना चाहेंगे उनसे?
1: जी देखिए, जो बच्चों का पीडियाट्रिक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो हमारी गवर्नमेंट का बहुत एस्टेब्लिश और ऑर्गेनाइज प्रोग्राम है। जो उसका कवरेज है वो भी बहुत अच्छा है। कुछ पॉकेट्स हैं, कुछ जो है कल्चरल बैरियर्स हैं, कुछ जो है रीजनल बैरियर्स हैं, ठीक है। तो मैं तो उनसे यही कहना चाहूंगा कि वैक्सीनेशन सभी को कराना है। वैक्सीन जो है वो आज की प्रिवेंशन के लिए नहीं है, बट फ्यूचर में जो है वो आपको प्रोटेक्ट करेंगी बहुत सारी बीमारियों से, ठीक है। और जो पीडियाट्रिक एज ग्रुप में मैक्सिमम वैक्सीन जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। आपको जो है अपने नियर बाई सीएससी पीएससी में विजिट करना है और वैक्सीन लगवानी है। और वैक्सीन का जो कार्ड है पीडियाट्रिक एज ग्रुप में वेल एस्टेब्लिश बिल्कुल ऑर्गेनाइज करके बनाया गया है, उसको फॉलो करें शेड्यूल को, और इन फ्यूचर जो है आप बहुत सारी बीमारियों से प्रोटेक्टेड रहेंगे, ठीक है।
0: जी हाँ बिल्कुल। तो श्रोताओं, डॉक्टर साहब ने आपको सजग कर दिया है और तंदुरुस्ती हजार नियामत ये बार बार हम आपसे कहते हैं, तो उम्मीद है कि कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आपको बता दें कि आज हमने चर्चा की एडल्ट इम्यूनाइजेशन पर, यानी कि वयस्कों के टीकाकरण पर। उम्मीद है प्रोग्राम आपको जरूर पसंद आया होगा। तमाम जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे डॉक्टर प्रताप सिंह, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल नई दिल्ली। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई। और श्रोताओं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इस कार्यक्रम से आप जुड़े रहे। अनुराधा को दीजिए इजाजत और डॉक्टर साहब की ओर से भी आपको नमस्कार
1: जी,
0: धन्यवाद।
1: थैंक यू वेरी मच।
0: नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष सिक्का भी

0: जारी किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि राज्य सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। राज्य में नई सरकार गठित होने के बाद आज मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ये निर्णय लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी। श्री अधिकारी ने राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना और कई अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन की घोषणा की। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महिला श्रमिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए अधिनियम में कार्यस्थलों पर बच्चों की देखभाल के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। 5 वर्ष से कम उम्र के 5 या अधिक बच्चों की उपस्थिति में उनकी देखभाल के लिए एक महिला श्रमिक को नियुक्त किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए नागरिकों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर खर्च कम करने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में आज CII के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष अब भी जारी है। देश के लिए आर्थिक मोर्चे पर जिम्मेदारी से काम करना महत्वपूर्ण है। इस बीच वैश्विक उथल पुथल के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। भारतीय स्टेट बैंक की अनुसंधान रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में अर्थव्यवस्था में 6.6% की वृद्धि होने का अनुमान है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बंबई में एकीकृत कार्बन कैप्चर और उपयोग संयंत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने भूविज्ञान से जुड़े कार्बन डाइऑक्साइड पृथक्करण के लिए वैज्ञानिक ड्रिलिंग का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना को अगले महीने फ्रांस में होने वाले भारत इनोवेट्स 2026 में प्रस्तुत किया जाएगा। श्री प्रधान ने कहा कि अतीत में कार्बन कैप्चर के कई सफल प्रयोग हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भटियात उपमंडल में पर्यटकों के एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 बच्चों सहित 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में गुजरात के 5 पर्यटक थे जबकि चालक हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का निवासी था। ये दुर्घटना आज तड़के काकीरा लाहरू सड़क पर हुई। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। IPL क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से धर्मशाला में खेला जाएगा। अंक तालिका में पंजाब चौथे और दिल्ली कैपिटल्स 8वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी
1: नमस्कार नमस्कार नमस्कार एंड वेलकम टू अल्फा जैन ऑन आकाशवाणी एफएम रेनबो। मैं हूँ ज्योतिका और आज का टॉपिक हर यंग पर्सन की लाइफ से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। एनी गेसेस? पैशन वर्सेस प्रेशर। आज के टाइम में स्टूडेंट्स और यंगस्टर्स के पास ड्रीम्स भी बहुत हैं और एक्सपेक्टेशंस भी। एक तरफ होता है अपना पैशन, वो चीज जो हमें जेन्युइनली खुशी देती है, और दूसरी तरफ होता है प्रेशर, मार्क्स का, करियर का, सोसाइटी का और कभी कभी फैमिली एक्सपेक्टेशंस का भी। तो कैसे बैलेंस करें अपने ड्रीम्स और दुनिया की एक्सपेक्टेशंस को, इसी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं याशिका। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में कमला नेहरू कॉलेज में फिलहाल बीकॉम सेकेंड ईयर में है।

0: बहुत बहुत स्वागत है यशिका आज आपका।
1: हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट यशिका। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो शायद हर यंग पर्सन के लाइफ का पार्ट है, प्रेशर वर्सेस पैशन। हाँ, वही कंफ्यूजन, करियर सेफ चूज करूं या अपना ड्रीम फॉलो करूं, लोगों की सुनूं या अपने दिल की।
0: तो बस अगले एक घंटे तक हम बात करेंगे रियल कॉन्वर्सेशंस, रिलेटेबल डिस्कशंस और थोड़ी पॉजिटिविटी भी, सिर्फ यहाँ अल्फा जेन में, क्योंकि यशिका सच्ची में वो सारी बातें करेंगी जो आपके दिल को, ट्रस्ट मी, छू जाएंगी। राइट यशिका?
1: यस।

0: जो हो सो हो, हमेशा बिंदास रहना चाहिए और इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, राइट?
1: यस यस
0: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं अल्फा जर्न विद मी ज्योतिका, और मेरे साथ हैं याशिका।

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগ জ্যোতিষপুৰ। প্ৰিয় শ্ৰোতা, এতিয়া হিন্দী আৰু ইংৰাজীত বাতৰি শুনিবলৈ পাব। ৰিলে কৰা হ'ব দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই মুকেশ কুমাৰ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़कर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
2: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रूपये का विशेष सिक्का भी जारी किया। सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
1: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन 2026 के लिए देश में उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक है। सरकार ने कहा है कि देश के पास 60 दिन का कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस तथा 45 दिन का एलपीजी भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार $703 अरब के स्तर पर है। रक्षा मंत्री

0: राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई बैठक के दौरान ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा है कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से की गई 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल देशवासियों से 1 वर्ष तक विदेश यात्रा से बचने और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की थी। श्री मोदी ने लोगों से खाना पकाने के तेल की खपत कम करने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने तथा सोने की अनावश्यक खरीदारी से बचने का भी आग्रह किया था। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। अधिनियम का उद्देश्य 1 वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। निर्धारित समय में काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ, शेर, चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1313 अंक की भारी गिरावट के साथ 76015 पर बंद हुआ। निफ्टी 360 अंक कम होकर 23816 पर आ गया। एएफसी अंडर 17 एशिया कप महिला फुटबॉल का क्वार्टर फाइनल भारत और मेजबान चीन के बीच सुझाव में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक चीन ने 2-0 की बढ़त बना ली थी। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi has said Somnath Temple in Gujarat stands tall and eternal and showcases the country's civilizational courage and unbroken devotion. Mr. Modi today performed Mahapuja followed by the Kumbhabhishek and flag hoisting ceremony at the temple as part of the Somnath Amrit Mahotsav. The celebrations mark 75 years since the inauguration of the restored temple dedicated to Lord Shiv. In a social media post, Prime Minister Modi said, 1,000 years ago, the first of many attacks on Somnath took place. Mr. Modi said, the doors of the newly rebuilt Somnath Temple opened in 1951 in the presence of the then President Dr. Rajendra Prasad, proclaiming to the world that while the attackers have faded into the dust of history, the soul of Bharat endures. Earlier, addressing the gathering at the temple, Prime Minister Modi said, India is moving ahead with self-confidence and that the country's cultural heritage has played a key role in this progress. He said the reconstruction of the temple by Sardar Vallabhai Patel reflected India's commitment to preserving its heritage with pride.
2: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: The government today informed that there is no shortage of any petroleum products in the country and India has a stock of 60 days of crude oil, 60 days of natural gas and 45 days of LPG. This was informed during the 5th meeting of the informal group of ministers on West Asia chaired by Defence Minister Rajnath Singh in New Delhi today. The meeting took stock of the latest developments in the conflict and discussed ways to bolster country's readiness to ensure its minimum effect on the people. India is among the few countries where petroleum prices have held steady throughout this period of global volatility, even after more than 70 days since the conflict started. During the meeting,

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। এতিয়া শুনক সংস্কৃতত বাতৰি, ৰিলে কৰা হ'ব দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা।
1: ইয়ম আকাশবাণী সম্প্রতি বার্তা শ্রূয়ন্তাম প্রবাচিকা নিধি ঝা। আদৌ মুখ্যাঃ বার্তাঃ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অবোচত যত সোমনাথ অমৃত পর্ব ন কেবলম ভূতকালস্য উৎসবঃ অস্তি অপিতু আগামি সহস্র বর্ষাণি যাবত রাষ্ট্রস্য কৃতে প্রেরণা সূত্র ভবিষ্যতি। মন্দিরস্য পুনরুদ্ধারস্য পঞ্চ সপ্ততি বর্ষাণাম পূর্ণতামালক্ষ্য এষা মহাপূজা আয়োজিতা। পশ্চিমবঙ্গাল রাজ্যস্য নূতন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী অদ্য উদ্ঘোষিতবান যত রাজ্য সর্বকারেণ বাংলাদেশ সীম্নঃ সুরক্ষা প্রাচীর নির্মাণার্থম সীমা সুরক্ষা বলায় ভূ হস্তান্তরণস্য নির্ণয়ঃ স্বীকৃতঃ। কেন্দ্র প্রশাসনেন পঞ্চবিংশত্যুত্তর দ্বিসহস্রতম বর্ষস্য বিকশিত ভারত আজীবিকা প্রত্যাভূতি অভিযান অধিনিয়মঃ VBG রামজি ইতি অধিসূচিতঃ। বৈশ্বিক প্রতিকূল স্থিতিঃ সত্যপি দেশস্য অর্থব্যবস্থা সুদৃঢ়া বর্ততে, সহৈব অনুমীয়তে যত আগামী বিত্তবর্ষে অর্থব্যবস্থা 6.6% যাবত বর্ধিষ্যতে। অপি চ ক্রীড়া বার্তাসু ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লীগ ক্রিকেট স্পর্ধা মালিকায়াম অদ্য সায়ংকালে ধর্মশালায়াঃ হিমাচল প্রদেশ ক্রিকেট সংঘ ক্রীড়াঙ্গণে পঞ্জাব কিংস অথ চ দিল্লি ক্যাপিটালস দলয়োর্মধ্যে স্পর্ধা ভবিষ্যতি। अथ विस्तृतीकृताः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य गुजरात राज्यस्य सोमनाथ मन्दिरे सोमनाथ अमृत पर्व महोत्सवावसरे विशेष पूजाम् अकरोत्। मन्दिरस्य पुनरुद्धारस्य पञ्चसप्तति वर्षाणां पूर्णतामालक्ष्य एषा महापूजा आयोजिता। महापूजायाः अनन्तरं कुम्भाभिषेकः ध्वजारोहण समारोहश्चापि सम्पन्नः। अवसरे अस्मिन् भाषमाणः प्रधानमन्त्री प्रावोचत् यत् सोमनाथ मन्दिरं देशस्य शाश्वत आत्मनः दिव्यतायाः सहैव अगाध श्रद्धायाः प्रतीकं वर्तते। तेन प्रोदीरितं यत् सोमनाथ अमृत पर्व केवलं भूतकालस्य उत्सवः नास्ति, अपि तु आगामि सहस्र वर्षाणि यावत् राष्ट्रस्य कृते प्रेरणास्तोत्रः भविष्यति।
2: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवसावसरे प्रधानमंत्री प्रोक्तवान यत् अद्यतन दिवसे एवं भारतस्य देशस्य आद्यत्वेन परमाणु त्रयाणां परीक्षणं जातम्। अनेन अस्माकं वैज्ञानिकाः विश्वस्य पुरतः भारतस्य सामर्थ्यं प्रदर्शितवन्तः।
2: दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती।
1: पूर्वाहणे प्रधानमंत्री प्रभास पाटनम संप्राप्य हमीरजी गोहिल क्षेत्रम यावत 1 किलोमीटर दीर्घम पथ प्रदर्शनम अकरोत्। अस्मिन् कार्यक्रमे मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेलः उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी च तेन सह उपस्थितौ आस्ताम। प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेलस्य प्रतिमायां पुष्पार्पणं विधाय श्रद्धांजलिं समर्पितवान्। पश्चिम बंगाल राज्यस्य नूतन मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अद्य उद्घोषितवान् यत् राज्य सर्वकारेण बांग्लादेश सीम्नः सुरक्षा प्राचीर निर्माणार्थं सीमा सुरक्षा बलाय भूहस्तांतरणस्य निर्णयः स्वीकृतः। नूतन प्रशासनस्य निर्माणानन्तरं प्रथमायां मंत्रिमंडल गोष्ठ्यां एते निर्णयाः स्वीकृताः। मुख्यमंत्रिणा स्पष्टीकृतं यत् आगामी पञ्चचत्वारिंशत् दिनेषु सीमा प्राचीर रचनार्थं भूम्यधिकारः सीमा सुरक्षा बलाय प्रदास्यते।
3: आज पहले कैबिनेट में हम लोग VSF को लैंड ट्रांसपोर्ट करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड ट्रांसपोर्ट आज से शुरू होगा। पहले कैबिनेट ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन MHA को ट्रांसफर करेगा, VSF फेंसिंग पूरा कर देगा और इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजोल्व हो जाएगा।
1: मुख्यमंत्रिणा श्री अधिकारी इत्यमुना राज्य केन्द्र सर्वकारस्य महती आयुष्मान भारतम स्वास्थ्य योजना अन्याः च राष्ट्रीय योजनाः प्रवर्तयितुं घोषणा कृता। अनेन सहैव मंत्रिमण्डलेन विद्यालय शिक्षक पदानां आवेदकानां कृते आयुः सीमायां पञ्चवर्षाणां वृद्धिः अपि स्वीकृता, येन युवभिः अधिकारावसराः प्राप्स्यन्ते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन AIR चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रोक्तवान् यत् केन्द्र सर्वकारस्य निरन्तर प्रयासैः भारतं पश्चिम एशिया संघर्षेण उत्पन्नस्य ऊर्जा संकटस्य प्रभावी रीत्या प्रबन्धनं करोति। तेलंगाना राज्यस्य राजधान्यां हैदराबाद नगरे एकां जनसभां संबोधयन् श्रीमोदी नागरिकेभ्यः आह्वानम् अकरोत् यत् आगामी एकवर्षं यावत् तैलंधनानां संयमित उपयोगः करणीयः, तेन अनपेक्षित विदेश यात्राभ्यः दूरीकरणं, स्वर्ण क्रयणे नियन्त्रणं तथा च स्थानीय वस्तूनां प्राधान्यं स्वीकर्तुं विशेषः आग्रहः विहितः, येन देशस्य अर्थव्यवस्था सुदृढा स्यात्।
2: आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है हमें वो मुद्रा भी बचानी है। वैश्विक संकटों से जो चुनौतियां आई है हमें उन चुनौतियों को परास्त करना होगा।
1: केन्द्र प्रशासनेन पञ्चविंशत्युत्तर द्विसहस्रतम वर्षस्य विकसित भारत आजीविका प्रत्याभूति अभियान अधिनियमः VBG-RAMJI इति अधिसूचितः। अधिनियमोऽयम् अस्य वर्षस्य जुलाई मासस्य प्रथम दिनांकात् कृत्स्नेहि देशे प्रवर्तयिष्यते। वैश्विक प्रतिकूल स्थितिः सत्यपि देशस्य अर्थव्यवस्था सुदृढा वर्तते। अद्य प्रकाशितेन SBI शोध इत्यस्य प्रतिवेदनेन अनुमीयते यत् आगामी वित्तवर्षे अर्थव्यवस्था 6.6% यावत् वर्धिष्यते। प्रतिवेदने इदम्

0: अपि प्रोक्तं यत् जीडीपी वृद्धिः प्रायः 7.2% भविष्यति। पश्चिम बंगाल राज्ये भारतीय जनता दलं विरुध्य संयुक्त विपक्षी मोर्चा इति निर्मातुं ममता बैनर्जी महोदयायाः प्रस्तावः कांग्रेस वामपंथी दलैः निराकृतः। तृणमूल कांग्रेस नेत्री ममता बैनर्जी कांग्रेस मार्क्सवादी कम्युनिस्ट दलं समेत्य सर्वेषां विपक्षी दलानां भाजपा विरुद्धं एकत्रीकरणाय आह्वानं कृतवती। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन बृहस्पतिवासरं यावत् देशस्य उत्तर पश्चिम भागस्य केषुचित् स्थानेषु मेघ गर्जनस्य विद्युत्पातस्य प्रचण्ड वायुनां च पूर्वानुमानं ख्यापितम्। अद्य श्वः च जम्मू कश्मीर लद्दाख क्षेत्रयोः केषुचित् स्थानेषु उपल वर्षा अपि सम्भाव्यते। ऋतु विभागेन उक्तं यत् हिमाचल प्रदेशे उत्तराखण्ड राज्ये च श्वः एतादृशी स्थितिः भविष्यति। अत्रावधेयं यत् उत्तराखण्ड प्रशासनेन चारधाम यात्रा यात्रिणः पर्यटकाः च निवेदिताः यत् ते राज्यस्य पर्वतीय क्षेत्रेषु प्रतिकूल स्थितिं वीक्ष्य सुरक्षिताः भवेयुः। आईपीएल क्रिकेट क्रीडा मालिकायाम् अद्य सायंकाले धर्मशालायाः हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ क्रीडांगणे पंजाब किंग्स अथ च दिल्ली कैपिटल्स इत्यनयोः दलयोर्मध्ये स्पर्धा भविष्यति। एषा क्रीडा सायं 7:30 आरप्स्यते। इति वार्ताः।
1: বাতৰিৰ পিছতে পুনৰ উভতি আহিছো যুৱবাণীৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়ালৈ। আমাৰ অনুষ্ঠান প্ৰচাৰিত হৈছে মিডিয়াম ৱেভৰ 289.9 মিটাৰত 1035 কিলোহাৰ্জত আৰু ডিআৰএম ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ 1026 কিলোহাৰ্জত আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ পৰা। প্ৰিয় শ্ৰোতা, এইবাৰ শুনাবলৈ লৈছো দৃষ্টিৰেখাৰ কণ্ঠত বৰগীত।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अतहर सईद। सरकार ने कहा है कि देश के पास 60 दिन का कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस तथा 45 दिन का एलपीजी भंडार है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई बैठक के दौरान ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन 2026 के लिए देश में उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से की गई 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल देशवासियों से 1 वर्ष तक विदेश यात्रा से बचने और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की थी। श्री मोदी ने लोगों से खाना पकाने के तेल की खपत कम करने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने तथा सोने की अनावश्यक खरीदारी से बचने का भी आग्रह किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
2: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: इस अवसर पर

0: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने बड़ोदरा में सरदार धाम परिसर का उद्घाटन किया। उन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने परिसर में भोजन और स्वागत क्षेत्र तथा ई पुस्तकालय का अवलोकन किया। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देशभर में लागू हो जाएगा। अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। निर्धारित समय में काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि बाघ शेर चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1313 अंकों की भारी गिरावट के साथ 76,015 पर बंद हुआ। निफ्टी 360 अंक कम होकर 23,816 पर आ गया। एएफसी अंडर 17 एशिया कप फुटबॉल का क्वार्टर फाइनल भारत और मेजबान चीन के बीच सोझो में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक चीन ने 3-0 की बढ़त बना ली थी। इधर आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi has said Somnath Temple in Gujarat stands tall and eternal and showcases the country's civilizational courage and unbroken devotion. Mr. Modi today performed Maha Puja followed by the Kumbh Abhishek and flag hoisting ceremony at the temple as part of the Somnath Amrut Mahotsav. The celebrations mark 75 years since the inauguration of the restored temple dedicated to Lord Shiva. In a social media post after the visit to the temple, Prime Minister Modi said, 1,000 years ago, the first of many attacks on Somnath took place. Mr. Modi said the doors of the newly rebuilt Somnath Temple opened in 1951 in the presence of the then President Dr. Rajendra Prasad, proclaiming to the world that while the attackers have faded into the dust of history, the soul of Bharat endures. Early addressing the gathering at the temple, Prime Minister Modi said, India is moving ahead with self-confidence and that the country's cultural heritage has played a key role in this progress. He said the reconstruction of the temple by Sardar Vallabhbhai Patel reflected India's commitment to preserving its heritage with pride.
2: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था। तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Sardar Dham Hostel at Varodra a short while ago. The project includes hostel facilities for 1,000 boys and 1,000 girls along with amenities like a central dining hall, library and auditorium. Mr. Modi also visited various facilities at the Sardar Dham complex, including the reception area, civil amenities, dining area and e-library. The government today informed that there is no shortage of any petroleum products in the country and India has a stock of 60 days of crude oil, 60 days of natural gas and 45 days of LPG. This was informed during the 5th meeting of the informal group of ministers on West Asia, chaired by Defence Minister Rajnath Singh in New Delhi today. The meeting took stock of the latest developments in the conflict and discussed ways to bolster country's readiness to ensure its minimum effect on the people. India is among the few countries where petroleum prices have held steady throughout this period of global volatility, even after more than 70 days since the conflict started. During the meeting, it was informed that the foreign exchange reserves stand at a comfortable $703 billion. Defence Minister Rajnath Singh directed the officials to take concrete steps to implement the Prime Minister's appeal at the ground level. Prime Minister Modi made 7 appeals to citizens yesterday to deal with adverse impacts of West Asia crisis, including

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। খন্তেক পাছতেই 8:45 সামাচাৰ সন্ধ্যা, 9:00 নিউজ এট 9 আৰু 9:15 স্পটলাইট দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সে সমাচার সন্ধ্যা কে সাথ মে মুকেশ কুমার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নে লোগো সে রাষ্ট্রীয় সংসাধনো পর বোঝ কম করনে কে লিয়ে একজুট হোনে কা আহ্বান কিয়া। পশ্চিম এশিয়া সংঘর্ষ কো দশক কে সবসে বড়ে সংকটো মে সে বতায়া। সরকার নে কহা পেট্রোলিয়াম উৎপাদো কি কোই কমি নহি, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये राज्य में एनडीए का लगातार तीसरा कार्यकाल होगा। मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय पुरुष टीम वनडे क्रिकेट टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े।
2: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
1: प्रधानमंत्री ने लोगों से 7 सूत्रीय अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टाले।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। उन्होंने नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए। श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है बल्कि लगातार आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
2: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है, विदेशी मुद्रा भंडार

0: 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपीलों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने लोगों से मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पूलिंग को अपनाकर पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने का आग्रह किया था। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह नागरिकों से किया था। श्री मोदी ने एक वर्ष के लिए विदेशों में कार्यक्रम आयोजित करने या अत्यधिक सोने की खरीदारी को सीमित करने का भी आग्रह किया था। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग 50% तक कम करने, प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने का आग्रह किया। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है।
3: फॉर द सीजन ऑफ खरीफ 2026,
4: खरीफ 2026 सीजन के लिए उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक उपलब्ध है। प्रमुख उर्वरकों की अधिकतम खुदरा मूल्य MRP में भी लगभग स्थिरता बनी हुई है। संकट काल के बाद देश में उर्वरकों का घरेलू उत्पादन 76.78 लाख मीट्रिक टन रहा है, जबकि आयात के माध्यम से 19.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक प्राप्त हुए हैं। संकट की स्थिति के बाद लगभग 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
0: कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी देशवासियों से प्रधानमंत्री की 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोगों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर खर्च कम करने का आग्रह किया। वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देशभर में लागू हो जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि देशभर में इसके कार्यान्वयन के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
2: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेह भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आज ही के दिन वर्ष 1998 में पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में देश में स्टार्टअप्स के साथ रक्षा उत्पादन और निर्यात में कई गुना वृद्धि हुई है।
3: In 2014,

0: वर्ष 2014 में हमारे पास 350 से 400 स्टार्टअप थे, आज हमारे पास 2 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में हम दुनिया में तीसरे स्थान पर हैं। सिर्फ एक दशक में हमारा रक्षा उत्पादन 174 गुना बढ़कर 1,54,000 करोड़ रुपए हो गया है और हमारा रक्षा निर्यात भी एक दशक में 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ, शेर, चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका उद्देश्य बाघ, शेर, चीता और हिम तेंदुआ सहित 7 प्रमुख बिग कैट्स की प्रजातियों का संरक्षण करना है।
0: IBCA प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक पहल है बिग कैट्स के संरक्षण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि उनके रहने के ठिकाने, तकनीक आधारित निगरानी, सामुदायिक संरक्षण, क्षमता निर्माण और संरक्षण के प्रति जागरूकता को सहयोग देने के लिए कॉर्पोरेट जगत का साथ बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप इन बिग कैट्स को बचाने के लिए आगे आएं।
2: टू कम फॉरवर्ड टू सेव द बिग कैट्स।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। असम में कल हेमंत बिस्व शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी के साथ श्री शर्मा लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता बन जाएंगे। ये राज्य में एनडीए का लगातार 3रा कार्यकाल होगा। पुदुचेरी में बुधवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। राज्य में नई गठित सरकार के बाद पहली मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी। राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना सहित कई अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन की भी घोषणा की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 76,015 पर बंद हुआ। निफ्टी 23,816 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 83 पैसे की गिरावट दर्ज करते हुए 95.31 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अगले 2-3 दिन में अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इस बीच असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 2 दिन में तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली में कल बादल छाए रहने और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की एक दिवसीय टीम रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। आज जारी की गई रैंकिंग में न्यूजीलैंड पर भारत की बढ़त 8 अंक से घटकर 5 रह गई है। भारत 1 अंक के नुकसान के साथ 119 अंक से घटकर 118 पर आ गया है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 17 वर्ग में आज 8 मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गए। हालांकि 4 भारतीय मुक्केबाजों को आज सेमीफाइनल में हार के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब किंग्स ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 149 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग शामिल होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया।

0: सरकार ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls upon citizens to unite to ease burden on national resources, terms West Asia conflict one of decade's biggest crises. Government assures no shortage of petroleum as the country holds 60 days stock of crude oil and natural gas and 45 days of LPG. Centre notifies implementation of Viksit Bharat G. Ramji Act from 1st of July. BJP leader Hemanta Biswa Sarma set to take oath as Assam Chief Minister tomorrow, marking NDA's third consecutive term in the state. IMD forecasts heat wave conditions over Gujarat, Central Maharashtra, Rajasthan and West Madhya Pradesh tomorrow. And in cricket, India retained top spot in men's ODI team rankings. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today called upon the citizens to unite to ease burden on national resources, terming the West Asia conflict one of decade's biggest crises. The Prime Minister was addressing the gathering after inaugurating the Sardar Dham Hostel at Vadodara in Gujarat.
2: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
1: Prime Minister Modi said the government is making continuous efforts to ensure that this situation has the minimal possible impact on the people of the country. The Prime Minister reiterated his 7-point appeal to tackle the adverse impact of West Asia crisis. These include reducing fuel consumption, prioritizing work from home wherever possible, avoiding foreign travel for a year, and adopting Swadeshi products. He has also urged the citizens to move towards natural farming and avoiding unnecessary gold purchases.
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
1: Sardar Dham Hostel in Vadodara includes hostel facilities for 1,000 boys and 1,000 girls, along with amenities like a central dining hall, library and auditorium. Mr. Modi also visited various facilities at the Sardar Dham complex, including the reception area, civil amenities, dining area and e-library. Earlier in the day, Prime Minister Modi took part in the Somnath Amrit Mahotsav, marking 75 years since the inauguration of the restored temple in Gujarat dedicated to Lord Shiv. Mr. Modi performed Mahapuja followed by the Kumbhabhishek and flag hoisting ceremony at the temple as part of the celebrations. In a social media post after the visit to the temple, the Prime Minister said, "Somnath Temple stands tall and eternal and showcases the country's civilizational courage and unbroken devotion." He said 1,000 years ago, the first of many attacks on Somnath took place. Mr. Modi added, "The doors of the newly rebuilt Somnath Temple opened in 1951 in the presence of the then President Dr. Rajendra Prasad, proclaiming

जरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।